FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 28वीं तिथि। तदनुसार 19 सितंबर सन 2026 हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस समय 5:59 हो रहे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सम्मेलन में राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इसमें 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर कल जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई। पिछले वर्ष के दौरान भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार जिला स्तर पर भी श्रम बाजार के विवरण जारी किए हैं। लगभग 57.8% जिलों में महिलाओं की श्रम भागीदारी 40% से अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाले 50% जिलों में श्रमिक जनसंख्या दर 37.3 से 76.7% के बीच रही है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल के

0: अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी गई थी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित एलआईसी निवेश धोखाधड़ी के मामले में मुंबई स्थित रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की शिकायत के आधार पर किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल ने आंध्र प्रदेश के डुग्गा राजपट्टनम में नया ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए नेशनल शिप बिल्डिंग और हैवी इंडस्ट्रीज पार्क आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमडीएल रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर इस उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: नहीं तो बहुत बुरी तरह से आवाज कर रहा है सर से बोल रही हूँ तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या चल रहा है? भजन जा रहा है सर?
1: जा तो रहा।
0: नहीं सर ये बंद है यहाँ से।
1: नहीं, नहीं, नहीं।

श्री राधा रानी बड़ी ही नटखट हैं, और वो जब नटखट कृष्ण कन्हैया की बांसुरी को चुरा लेती हैं तो हमारे मनमोहन अत्यंत व्याकुल हो उठते हैं और क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं इस भजन में।

हे श्री राधे की रानी, हे कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा, हम सभी आपकी शरण में हैं क्योंकि आप जीवन में आनंद भरने वाली हैं। हम सभी पर कृपा कर हमें अपनी शरण में लीजिए माता।

0: संवेद स्वरों में मातृभूमि के इसी वंदन के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यही होता है संपन्न। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने जिन कलाकारों को सुना वो थे नरेश मल्होत्रा, अनूप जलोटा, लता मंगेशकर और पंडित जसराज। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन बिंदु के अंतर्गत आज का विचार, कृष्ण की प्रेरणा शक्ति राधा। आलेख भोलानाथ पांडे का है, वाचन कर रहे हैं रामगोपाल।
1: राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी के नाम का ये उद्घोष भारत के कोने कोने में ही नहीं अपितु भारत की सीमाओं को पार करता हुआ जहां जहां भारतवासी रहते हैं उनके कीर्तन का केंद्र बिंदु बना हुआ है। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण का जन्म होता है तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कृष्ण की प्रेरणा शक्ति राधा का। सर्वप्रथम राधा का नाम ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। इस पुराण में श्री कृष्ण भगवान ने राधा को अपना अर्धांश और मूल प्रकृति बताया है। आगे चलकर कृष्ण और राधा में अभेद स्थापित हो गया। भक्ति तथा विश्वास प्रमाण की चाह नहीं रखते हैं। राधा कृष्ण की शक्ति हैं। इस संदर्भ में कहा जाता है कि गोलोक में जब श्री कृष्ण को रास करने की इच्छा हुई तो उनकी ये इच्छा ही मूर्तिमयी किशोरी का रूप लेकर वाम पार्श्व में से प्रकट हो गई। रास में उत्पन्न होकर रास रासेश्वर की सेवा में अर्घ्य देने के लिए पुष्प चयन के लिए उन्होंने धावन गमन किया। अतः

0: उनका नाम राधा पड़ गया। कृष्ण उनके आराधक हैं और वे कृष्ण की आराधिकाएं हैं, इस कारण वह श्री राधिका हैं। वस्तुतः श्री राधे और कृष्ण अभिन्न हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं। कृष्ण का रूप राधा और राधा का रूप कृष्ण बनकर एकाकार हो जाता है। वृंदावन में इसीलिए राधा वल्लभ और राधा रमण के मंदिरों के माध्यम से राधा का वैशिष्ट्य झलकता है। कृष्ण का नित्य निवास गोलोक ही तो है, किंतु लीलाओं के लिए वह वृंदावन छोड़कर परित्राणाय साधु नाम के लिए ब्रजेतर हो गए थे। भक्त प्रवर चैतन्य महाप्रभु, हरिवंश जी, हरिदास जी और हरिराम व्यास जी आदि ने राधा कृष्ण भक्ति का आस्वादन कर जन साधारण को प्रेरणा दी। इन रसिक भक्तों की संगत, नाम संकीर्तन, राधा कृष्ण की लीलाओं का मंचन आज जन जन के हृदय का आकर्षण बन चुका है। ब्रजभूमि में हजारों राधा भक्त बाहर से आते हैं और अपना सब कुछ राधा कृष्ण की स्मृति में खो देते हैं। राधा अष्टमी के महात्म्य का प्रभाव ब्रज क्षेत्र में, विशेषतः वृंदावन में सर्वत्र दिखाई देता है। वृंदावन की धर्मशालाएं तथा अतिथिशालाएं श्रद्धालुओं और भक्तगणों से भरने लगती हैं। अष्टमी के प्रातःकाल से ही राधा वल्लभ मंदिर आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन जाता है। संगीत की मधुर ध्वनि राधा कृष्ण की स्मृतियों को साकार करने लगती है। चारों ओर आनंद का सैलाब उमड़ता दिखाई पड़ता है। रात्रि के समय विशाल शोभा यात्रा, जिसे चाव कहते हैं, निकाली जाती है। उसमें राधा कृष्ण की विभिन्न झांकियां भक्त हृदयों को आनंदित करती हैं। इसके साथ साथ टटिया स्थान का मेला भी इस अवसर पर भावोद्दीपक होता है। राधा का ये प्रभाव कविवर बिहारी इन शब्दों में प्रकट करते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परत श्याम हरित द्वित होय।
1: चिंतन बिंदु के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज का विचार, कृष्ण की प्रेरणा शक्ति राधा। आलेख भोलानाथ पांडे का था, वाचन कर रहे थे राम गोपाल। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसंग।

वन गमन के लिए श्रीराम माता कौशल्या की आज्ञा और आशीर्वाद ले चुके हैं। उसी समय आकुल सीता वहां पहुंचती हैं। सास के चरणों की वंदना करके सिर झुकाकर वहां बैठ जाती हैं। पैर की अंगुलियों के नाखून से धरती कुरेदती हुई सोच रही हैं कि किस सुकर्म का फल उन्हें प्राप्त होगा। शरीर तथा प्राण दोनों पति के साथ जाएंगे या केवल प्राणों को ही उनका साथ प्राप्त होगा। उनके सुंदर नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पुत्र वधु की ये दशा देख माता कौशल्या उनके लिए सास ससुर और सभी कुटुंबियों के स्नेह और सद्भाव की चर्चा करती हैं। जिस सुकुमारी के पिता राजाओं के शिरोमणि जनक हैं, श्वसुर सूर्यवंश के सूर्य और पति सूर्य कुल के कमल को खिलाने वाले चंद्रमा के समान रूप और गुण के भंडार हैं, ऐसी रूप राशि और शीलवंती बहू को माता कौशल्या ने आंखों की पुतली के समान प्यार से रखा है। माता कौशल्या का श्रीराम से प्रश्न है कि सीता के लिए उनकी क्या आज्ञा है। क्या विधाता ने सीता को वन के कष्ट भोगने के लिए रचा है? सीता यदि घर ही रहें तो माता कौशल्या को बड़ा सहारा मिल जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसंग। स्वर वाणी जयराम का था, संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। प्रातः 10:30 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य 2026 के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण। कार्यक्रम का समय याद रखें, समय रहेगा प्रातः 10:30। रात्रि 9:30 का समय रहेगा राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

प्रातः 6:50 पर होंगी खेती की बातें। विषय होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन के दुधारू पशुओं में दुष्परिणाम। प्रातः 7:00 आनंद लीजिएगा भूले बिसरे गीतों का। 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा संगीत रूपक आज राधा जन्म भयो। प्रातः 8:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। प्रातः 9:00 विकास पद के अंतर्गत होगी बातचीत आज की बचत कल की सुरक्षा। प्रातः 9:30 पर होगा ब्रज के समसामयिक गतिविधियों पर आधारित सजीव कार्यक्रम ब्रज दर्पण। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन। समय रहेगा प्रातः 10:00। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS हम आपके लिए लेकर आएंगे दोपहर 12:00। 12:30 पर सुनिएगा भगवान दास अज्ञानी का रांझा गायन। 1:15 का समय होगा बहनों के कार्यक्रम घर अंगना का। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा ब्रज में राधाअष्टमी की धूम और पोषण आहार और शिक्षा को महत्व। साथ ही सुनिएगा वार्ता ब्रज में राधाअष्टमी महोत्सव। वार्ताकार होंगी सुषमा सारस्वत। साथ ही आनंद लेंगे ब्रज लोक गीतों का। 2:30 का समय रहेगा सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का। 3:00 होगा हमारी प्रथम सभा का समापन। संध्या 5:00

0: के 30 मिनट से होगा दूसरी सभा का आरंभ कार्यक्रम युववाणी के साथ। आज की बात होगी राधा जन्मोत्सव और स्वामी हरदास जयंती पर, साथ ही आनंद लेंगे फिल्मी गीतों का। ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा में आज आप सुनेंगे राधा रानी से श्री कृष्ण का मिलन, ये प्रसंग। कथाकार होंगे योगेश तिवारी, समय रहेगा संध्या 6:15। संध्या वंदन ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 6:30 से। श्रोताओं के संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी होगा संध्या 7:31 से। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सेवा ही संकल्प, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। सुहाने तराने ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 9:15 से। किसान वाणी ये प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे संध्या 6:50 से। ये कार्यक्रम रिले किया जाएगा हमारे लखनऊ केंद्र से। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी दूसरी सभा का समापन। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन के दुधारू पशुओं में दुष्परिणाम। जानकारी दे रहे हैं विजय सिंह नौलखा।
1: आज हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन का गाय और भैंस के स्वास्थ्य पर क्या दुष्परिणाम होता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, अक्सर किसान या पशुपालक भाई सुई लगाकर दूध निकालते हैं, इसमें ऑक्सीटोसिन नाम के एक हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो शरीर के क्रिया विज्ञान को सीधे प्रभावित करता है, शरीर की विभिन्न ग्रंथियों में संकुचन उत्पन्न करता है। प्राकृतिक रूप से संकुचन की आवश्यकता बच्चे के जन्म के समय, गर्भाशय में तथा दूध उतारते समय पशु के दुग्ध संस्थान में एलुवेलाई नामक ग्रंथि में होती है। प्राकृतिक रूप से यह हार्मोन विभिन्न ग्रंथियों में संकुचन उत्पन्न करने के लिए समय समय पर आवश्यकता के अनुसार शरीर से श्रावित किया जाता है। गाय और भैंस प्रजाति के मादा पशुओं में गर्भाशय के संकुचन की आवश्यकता तब होती है जब वह बच्चे को जन्म देती है। प्राकृतिक रूप से पर्याप्त मात्रा में यह हार्मोन श्रावित होता है तथा बच्चे का सकुशल जन्म हो जाता है। इसी प्रकार दूध निकालते समय इस हार्मोन की आवश्यकता होती है जब गाय या भैंस के स्तनों को लबारे या मनुष्य द्वारा खींचा, चूसा या सहलाया जाता है, तब विभिन्न शारीरिक क्रिया विज्ञानी प्रतिक्रियाओं के चलते यह हार्मोन अपने आप श्रावित होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में ऑक्सीटोसिन हार्मोन गाय या भैंस के दुग्ध संस्थान में स्थित एलुवेलाई नामक ग्रंथि को संकुचित कर देता है। इस ग्रंथि में दूध भंडारित रहता है, इस प्रकार वह दूध स्तनों में आ जाता है। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हार्मोन की शरीर के अंदर उम्र केवल 1 से 5 मिनट तक होती है। प्राकृतिक रूप से इसे लीवर और गुर्दे यानी किडनी द्वारा रक्त से पृथक करके निकाला जाता है। प्राकृतिक रूप से इस हार्मोन की रक्त में उतनी ही मात्रा श्रावित होती है जितनी वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है, अतः ऐसी परिस्थिति में इसका पशु के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। अप्राकृतिक रूप से अर्थात इंजेक्शन के रूप में इस हार्मोन की अत्यधिक मात्रा शरीर में पहुंचा दी जाती है, जिससे यह हार्मोन शरीर की अन्य ग्रंथियों में भी अवांछनीय संकुचन उत्पन्न कर देता है। इसे रक्त से हटाने के लिए लीवर तथा गुर्दों को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है, अतः इसका सीधा प्रभाव लीवर, गुर्दों तथा अन्य ग्रंथियों पर पड़ता है तथा इसके खराब हो जाने की आशंका बनी रहती है। अब ऐसे पशु का दूध जिसे अत्यधिक मात्रा में एवं प्रतिदिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जा रहा है, उसके कच्चे दूध के सेवन से लवारों तथा मनुष्य के शरीर में अनेक विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं तथा वे सभी लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं जो गाय या भैंस को अधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिए जाने से उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन की अत्यधिक मात्रा का सीधा सीधा कुप्रभाव गर्भाशय तथा भ्रूण की स्थिति पर पड़ता है। इस हार्मोन के दिए जाने से गर्भाशय में संकुचन प्रारंभ हो जाता है, जिससे गर्भाशय तथा भ्रूण को चोट लगती है। कई बार यह हार्मोन भ्रूण की मौत का कारण भी बन जाता है। गर्भित पशुओं में इस हार्मोन का प्रतिदिन एवं अत्यधिक उपयोग करने से गर्भपात हो सकता है तथा कभी कभी गर्भाशय भी बाहर आ जाता है। ऐसी गाय जिसे प्रतिदिन अधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जा रहा है, उसके गर्भ

0: गर्भाधान में भी बाद में समस्या उत्पन्न हो सकती है। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन की अधिक मात्रा पशु को लंबी अवधि तक दी जाती है तो पशु में प्रारंभिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। पशु उदासी महसूस करता है जिसमें अवसाद भी सम्मिलित है। गंभीर लक्षणों के रूप में पशु में नशे के लक्षण परिलक्षित होते हैं जो अंततः दौरे में बदल जाते हैं। पशु कोमा में जा सकता है और उसकी मौत भी संभव है। इन लक्षणों के उत्पन्न होने पर तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। ऐसे लक्षणों से पशु को बचाए रखने के लिए पशु को अपने स्तर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पशु से दूध प्राप्त करने के लिए इंजेक्शन के रूप में इस हार्मोन को बाहर से देना एक अप्राकृतिक क्रिया है। इससे पशु को कष्ट होता है और यह पशु उत्पीड़न की श्रेणी में भी आता है। पशु उत्पीड़न एक गैर कानूनी कार्य है, इसके लिए संविधान में सजा का भी प्रावधान है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी गाय या भैंस को ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन न दें। यदि वे ऐसा पहले से कर रहे हैं तो पशु के स्वास्थ्य तथा मानव समाज के हित में भी इसे अविलंब रोक दें। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बिना पशु चिकित्सक के परामर्श के पशुओं को देना गैर मानवीय तथा असंवैधानिक है।
1: खेती की बातों के अंतर्गत अभी आप ले रहे थे जानकारी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन के दुधारू पशुओं में दुष्परिणाम के विषय में। जानकारी दे रहे थे विजय सिंह नौलखा। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: तथ भारत सफल ब्रिक्स अध्यक्षतायै तस्य अभिनन्दनमपि कृतम्। प्रधानमन्त्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलने शेख खालिदस्य सहभागितायै तथा भारतस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं महत्वपूर्णानां परिणामानां प्राप्तौ सति संयुक्तारबामीरातस्य सहयोगस्य सहमतेः च प्रशंसां कृतवान्। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य छात्रसंघस्य निर्वाचनाय मतदान प्रक्रिया ह्यः सम्पन्ना। अस्मिन् निर्वाचने 88.41% मतदानं पञ्जीकृतम्। मतदानं द्वयोः चरणयोः सम्पन्नम्। ध्यातव्यमिदं यत् अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव संयुक्त सचिव चेत्येभ्यः पदेभ्यः मतदानं जातम्। मतगणना अद्य दिल्ली विश्वविद्यालयस्य उत्तरपरिसरे स्थितस्य विश्वविद्यालय क्रीडांगणस्य बहुद्देशीय सभागारे भविष्यति। ऐषमः एशिया क्रीडा महोत्सवस्य 20तमस्य संस्करणस्य भव्योद्घाटन समारोहः अद्य जापान देशस्य आइशी नागोया स्थिते पालोमा मिजुहो क्रीडांगणे भारतीय समयानुसारं मध्याह्ने 2:30 आरप्स्यते। द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री मनु भाकर अथ तजिंदर पाल सिंह तूरः च उद्घाटन समारोहे भारतस्य ध्वज वाहकौ भविष्यतः। एशिया क्रीडा अद्यारभ्य अक्टूबर मासस्य 4 दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। इति वार्ताः।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भूले बिसरे गीत।

मोहम्मद रफ़ी के सुर में अभी सुना बेटी बेटी फिल्म से आपने ये गीत। शब्द रचना शैलेंद्र की थी, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है गुमराह, स्वर महेंद्र कपूर का है, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की है, संगीत से सजाया है रवि ने।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं हेमंत कुमार को फिल्म बात एक रात की में। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है, संगीत दिया है एस टी बर्मन ने।

मन्ना डे को अभी आप सुन रहे थे फिल्म वक्त में, बोल साहिर के थे, संगीत से सजाया था रवि ने। आइए सुनते हैं उमा देवी को फिल्म अनोखी अदा में। शब्द रचना शकील बदायूनी की है, संगीत दिया है नौशाद ने।

0: मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ सहित देश के 45 स्थानों पर आयोजित 20वें रोजगार मेले को वर्चुअली करेंगे संबोधित। एनसीआर से जुड़े 8 जनपदों में वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की बैठक। पुराने वाहनों, नई ईवी नीति और औद्योगिक प्रदूषण पर हुई चर्चा। प्रदेश को भूजल स्रोतों की गुणवत्ता और स्थिति की निगरानी में देश भर में मिला पहला स्थान। और मथुरा सहित प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है राधा अष्टमी का पर्व। बरसाना के राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ सहित देश के 45 स्थानों पर आयोजित 20वें रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित करेंगे। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह मौजूद रहेंगे। नवनियुक्त उम्मीदवार भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे, जिनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे, जबकि शेष 797 अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर से जुड़े नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर सहित 8 जनपदों में वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर बैठक की। इस अवसर पर पुराने वाहनों, नई ईवी नीतियों, इलेक्ट्रिक बसों, प्रदूषण प्रमाण पत्र, औद्योगिक प्रदूषण और धूल प्रदूषण पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बैठक में विशेष रूप से एनसीआर से जुड़े जनपदों में प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। साथ ही केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया।
4: पॉल्यूशन को लेकर के सभी नगर निगम जो एनसीआर के हैं, उधर हमने विस्तृत कार्य योजना तैयार कराई है। पिछले दिसंबर से अभी तक लगभग 30 से ज्यादा बैठकों का आयोजन किया है और अब राज्य अनुसार जो सिटी स्पेसिफिक प्लान है उसमें भी

0: कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों एनसीआर के जो 63 छोटे छोटे शहर आते थे नगर निगम, उनके भी जो पंचायत के जनपद के अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के चेयरमैन हैं, नगर निगम के मेयर हैं, उनके साथ हमने विशाल बैठक करी और अभी हमने निर्देशित भी किया है इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाए।
1: बैठक में आगामी सर्दियों के दौरान प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रभावी, समयबद्ध और समन्वित कार्ययोजना तैयार करने पर भी चर्चा हुई। प्रदेश में 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा संकल्प महोत्सव 2026 आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में केंद्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं और देश प्रदेश में हुए सकारात्मक बदलाव की कहानी को सरल और संगीतपूर्ण नाटक के माध्यम से शहरों और गांवों तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 30 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक कराए जाएंगे, जबकि 10 विशिष्ट स्थलों, 98 जनपद स्तरीय स्थलों और 826 ब्लॉक स्तरीय स्थलों पर थीम पर आधारित रंगोली बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे वक्फ कानून में 2025 में किए गए संशोधन ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाकर वक्फ संपत्तियों को संरक्षित करने के साथ ही उनके दुरुपयोग पर रोक लगाई है। एक रिपोर्ट।
2: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में सरकारी जमीन पर किसी भी दावे की जांच अब जिलाधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाएगी और पहली बार हाईकोर्ट में अपील का प्रावधान भी खोला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून में किए गए संशोधन को मुस्लिम समाज के हित में उठाया गया कदम बताया।
3: मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई दे। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी, गरीब पसमंदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज है।
2: उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली रैदी ने कहा कि वक्फ कानून में संशोधन से मुस्लिम महिलाओं और यतीमों का सशक्तिकरण हुआ है।
4: वक्फ संपत्तियों के और बेहतर संरक्षण और बेहतर रखरखाव और खास करके आम जनता को जो बेनिफिशरीज हैं और खास के महिलाएं हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, उनके लिए जो है इसके अंदर जो है बहुत अच्छी एक सोच रख के इसको जो है इसमें संशोधन किया गया।
2: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू होने के बाद वक्फ संपत्तियों का संरक्षण बढ़ा है और आम जनमानस को इससे फायदा पहुंच रहा है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। भूजल स्रोतों की गुणवत्ता और स्थिति की निगरानी को लेकर किए जा रहे परीक्षण कार्य में प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। एक रिपोर्ट।
5: जांच के अंतर्गत राज्य और जिले स्तर की प्रयोगशालाओं से प्रदेश भर में भूजल स्रोत, भूमिगत व ओवरहेड टंकी समेत पानी के अन्य स्रोतों की पड़ताल की गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में 48,055 भूजल स्रोतों के परीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसके मुकाबले प्रदेश में 45,361 स्रोतों की जांच पूरी कर ली गई है। यह कुल लक्ष्य का 94.39% है। राज्यवार रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। यूपी जल निगम ग्रामीण प्रबंध निदेशक योगेश कुमार ने कहा कि भविष्य में भी प्रदेश में सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास जारी रहेगा। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: मथुरा सहित प्रदेश भर में आज राधाष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बरसाना के श्री राधा रानी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। तड़के 4 बजे से ही लाडली जी के अभिषेक के साथ दर्शन और पूजन का सिलसिला जारी है। मान्यता है कि भाद्रपद माह की शुक्ल अष्टमी को बरसाना में राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा अष्टमी पर्व पर बरसाना स्थित श्रीजी मंदिर की भव्य सजावट की गई है। आज पूरे दिन यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मथुरा SP सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि बरसाना क्षेत्र को 7 जोन

0: और 20 सेक्टर में बांटा गया है, जबकि 325 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए वरिष्ठ अधिकारी कंट्रोल रूम से आयोजन स्थल और आसपास की निगरानी करेंगे।
1: इस बार दो रास्ते, जो एक जो श्री जी गेट से कटारा पार्क होकर के सुदामा चौक तक जा रहा है और दूसरा रास्ता हम लोगों ने इस बार प्रारंभ किया है जो पीली कोठी से और ये लाडो गेट होकर के सुदामा चौक तरफ जाएगा। इन दो रास्तों से श्रद्धालुओं को हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कुल 38 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं और 11 प्रेशर प्वाइंट है जहाँ पर हम लोगों ने 30 शिफ्ट में भारी पुलिस बल लगाया है।
0: केंद्र सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ सहित देश के 45 स्थानों पर आयोजित 20वें रोजगार मेले को वर्चुअली करेंगे संबोधित। एनसीआर से जुड़े 8 जनपदों में वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की बैठक। पुराने वाहनों, नई ईवी नीति और औद्योगिक प्रदूषण पर हुई चर्चा। प्रदेश को भूजल स्रोतों की गुणवत्ता और स्थिति की निगरानी में देश भर में मिला पहला स्थान और मथुरा सहित प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है राधाष्टमी का पर्व। बरसाना के राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुनवे बारे हमारे सभी श्रोता साथिन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैया आज जन्म है हम सभी की लाडली श्री राधा रानी जी को। आप सबन के ताई या विशेष शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामना। हमारे ब्रज को, हमारे ठाकुर जी को तो अस्तित्व ही श्री राधा रानी से जुड़ो भयो है। श्री राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति कही जामे, और विनको नाम लिए बिना ठाकुर जी हमें प्राप्त नाए होंगे, ऐसो हम बार बार सुने। तो एक बार पुनः आप सबन के ताई श्री राधा रानी जी के जन्म की हार्दिक शुभकामना और बधाई। तो आओ भैया अब आनंद ले संगीत रूपक को, जाको शीर्षक है आज राधा जन्म भयो, या को आलेख सुरेश चतुर्वेदी को है और प्रस्तुति है सुरेश गुप्ता की।
1: लीजिए सुनिए सुरेश चतुर्वेदी का लिखा ये संगीत रूपक आज बिरज राधा जन्म भयो। संगीत निर्देशन और प्रस्तुति सुरेश गुप्ता की है।

0: मुहु धन्य भयो जब राधिका नाम को संग मिल्यो। एक शक्ति मिली अनुरक्ति मिली रस रूप मिल्यो रस सिंधु खिल्यो।
1: ब्रजवासिन को सुख की धारा ब्रजवासिन को सुख की धारा राधा भवबाजी का दूर करे। ब्रज भूमि को कनकन वंदन में जिनके पद आनंद भूर भरे।

भक्तन को मन एक वंदन ले, निस दिन चरनार विंदु ध्यावे, मन अंजुरी में भरी भाव पुष्प, नित प्रति अपनी विनती गावे।

0: ब्रज में प्रगटी वृष भानु लली, जन जीवन फूल्यो होंस लिए, नव निध के सुख को सार मिल्यो, नव गीत मिले हुलसाय ही।
1: घर घर आनंद घन उमड़ाई, घर घर वंदना गवन लागी, ब्रज नारी नार गोप ग्वाला, हर गली होन मगन लागी।

ऐसी अपूर्व निधि राशि पाई ब्रज जीवन धन्य भयो जानो सब शरणागति मंगल गावें एक वातावरण नयो जानो।

कृपा कोरती एक आस हर भक्त हृदय की अभिलाषा, उज्जवल पथ मिले सुखद जीवन सब जन जीवन की यह आशा।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर की 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल है। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
2: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए

0: कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
1: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए, नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी, एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। इस क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने ओसीएम्स और एपीडी जो है वो लगा ली है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
3: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। IIT मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के CEO और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
4: The government is supporting the sector through technology transfers.
5: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल हैं। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
3: गैलेक्सी आई के CEO सूर्य सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक उपलब्ध करा

0: आना है समाचार कक्ष से। मैं हिमांशु कांडपाल।
1: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर 221 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई।
2: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में 14 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 18 अरब डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासकर दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
3: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा, दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमरीका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला 2 उपचुनावों के लिए, अंतिम निर्णय बाद में। 2 न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचईएल ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मूडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में एएसआई की गोली मारकर हत्या, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान 2 हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठा

0: अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर के युगल स्वरों में अभी सुना आपने संगीत फिल्म का ये गीत। शब्द रचना संतोष आनंद की थी, संगीत दिया था आनंद मिलन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक को फिल्म बरसात में। बोल समीर के हैं, संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।
2: वजह क्या है बता दूं क्या
3: क्या

कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति को अभी आप सुन रहे थे फिल्म दलाल में। बोल अनजान के थे, संगीत दिया था बप्पी लहरी ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रंग से। स्वर अलका याग्निक और कुमार सानू के हैं, शब्द रचना समीर की है, संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है विकास पथ के अंतर्गत बातचीत, आज की बचत कल की सुरक्षा। राजीव कुमार सक्सेना से भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: श्रोताओं, जीवन किसी एक घटना या एक समय के दौर में चलने वाली चीज नहीं है। जीवन निरंतरता में है, चलते रहने में है, और इस चलते रहने में जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे और आपके सामने आते हैं। कई बार वो उतार चढ़ाव सामाजिक होते हैं, कई बार वो आर्थिक होते हैं। आपने देखा होगा कि पैसा यूँ तो सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पैसे से ही होते हैं, और अगर उस समय पैसा होता है तो वो हमारी बहुत मदद करता है। और सयाने लोग कह गए कि बचत कोई व्यक्ति अगर कर लेता है जीवन में, तो वो जो छोटी सी पूंजी होती है जो आज हमने इकट्ठी की है, कल के हमारे बहुत बड़े कामों में हमारी मदद करती है। तो ये बचत जो आज की है, वो कल की पूंजी कैसे बने, तो ये आज हमारी चर्चा के विषय रहेंगे। हमारे साथ है श्री राजीव कुमार सक्सेना जी। बचत क्यों आवश्यक है, कैसे हम इसको कर सकते हैं, यहीं से बात अगर हम राजीव जी शुरू करें आपके स्वागत के साथ साथ, तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि बचत का जो महत्व है जीवन में क्यों आवश्यक है।
2: देखिए सिंह साहब, बचत का आम आदमी के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। वो इसलिए है कि बचत हमारे जीवन को आसान बनाती है। अगर हमारे पास कोई पूंजी ना हो आड़े वक्त के लिए, तो हमें जाहिर सी बात है कि लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, उधार मांगना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, उल्टी सीधी शर्तों को मानना पड़ता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बचत का एक आम आदमी के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। और ये मैं समझता हूँ कि बचत कोई थोपी हुई चीज नहीं है, एक सहज मानवीय प्रवृत्ति है, और जो काफी हद तक मानव के जीवन में उसके मन में जो एक असुरक्षा की भावना होती है उससे जुड़ी हुई
1: जी। भारतीय जनमानस में देखें या भारतीय परंपरा में, संस्कृति में देखें, तो मैं समझता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे परिवार के लोगों ने बचत को कई रूपों में अपनाया है। तो ये कोई एक नया वो नहीं है, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ अंग है। चाहे जो बच्चों की गुल्लक खुलवा देना हो, या किसी छोटी पूंजी को कहीं उसमें जमा कर देना हो, तो इस रूप में कहीं ना कहीं व्यवहार में हमारे चलती आ रही है, लेकिन आज इसकी आवश्यकता और बढ़ गई है, ये आप कहना चाहते हैं।
2: जी जी, क्योंकि अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, भौतिकवादी सोच और संस्कृति बढ़ रही है, तो बचत का इस समय में मैं समझता हूँ कि और ज्यादा महत्व बढ़ गया है।
1: जी जी,
2: और बचत देखिए मैं बताऊँ, केवल या संचय की प्रवृत्ति मनुष्यों में नहीं होती है, ये छोटे छोटे जो प्राणी हैं जैसे चींटी है, मधुमक्खी है, उनमें भी होती है। आपने देखा होगा चींटी जब बरसात आने को होती है, उससे पहले ही अपने बिल में दाने ले जाकर इकट्ठा कर लेती है। इसी तरह से मधुमक्खी है, वो जाती है फूलों तक और थोड़ा थोड़ा पराग लाती है, इकट्ठा करती है। बल्कि मधुमक्खी के बारे में तो एक बड़ी मजेदार कहावत हम लोग भी प्रचारित करते हैं, और वो बचत का सूत्र वाक्य भी है कि रत्ती रत्ती मधुमक्खी लेती छत्ता जोड़, अल्प बचत में कीजिए मधुमक्खी से होड़।
1: क्या बात है।
2: तो ये मधुमक्खी जो है हालांकि एक बहुत छोटा प्राणी है, लेकिन हमें बचत के लिए प्रेरित करती है।
1: कहीं कहीं राजीव जी ये देखें, आप तो चूंकि साहित्यिक मन के आदमी है, तो जो प्राणी सामाजिक है तो वो कहीं ना कहीं परिवार के संचालन के लिए तो अपने संसाधनों को जोड़ के रखता है।
2: जी बिल्कुल, अब आप तो जानते ही हैं, प्रबुद्ध है ही हैं, जो बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं हमारे पिछली सदी के, 19वीं सदी के, कार्ल मार्क्स, उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था दास कैपिटल, वो पूंजी के महत्व को दर्शाता है।
1: जी जी।
2: और ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि बिना पूंजी के इस युग में कोई काम संभव नहीं है, चाहे वो हमारे निजी जीवन का काम हो या सार्वजनिक काम हो। आपको बच्चों का अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तब भी पूंजी की जरूरत है, किसी के स्वास्थ्य का उपचार कराना है तो उसके लिए पूंजी की जरूरत है, कोई विवाह या कोई अन्य आयोजन करना है मांगलिक, तो उसके लिए भी पूंजी की जरूरत है। यानी कदम कदम पर पूंजी की जरूरत पड़ती है।
1: जी जी।
2: और एक आम आदमी जो है वो कोई पूंजी ऐसा नहीं कि उसका एकदम उत्पादन कर लेता है, वो थोड़ा थोड़ा करके अपने खर्चों में बचत करके जोड़ता है, तो इस तरह से ही पूंजी इकट्ठी हो पाती है।
1: यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस विभाग को देखते हैं, कि सरकारी तौर पर जो कुछ बचत की योजनाएं चलाई जा रही हैं और जो आम आदमी के हित के लिए है, तो उस हिसाब से जो योजनाएं

0: संचालित की जा रही है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी दीजिए।
1: सिंह साहब, मैं सरकारी योजनाओं पर बाद में आऊंगा, पहले एक बचत का सूत्र या फंडा जरूर बताना चाहूंगा।
0: जी बिल्कुल, स्वागत है
1: जी। श्रोताओं से बात करने का इसी बहाने और मैं उसको अपने निजी जीवन पर भी लागू करता हूँ। देखिए, खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन बचत करने का सीधा सा फंडा या सूत्र ये है कि गैर जरूरी खर्चे छोड़ो, थोड़ा थोड़ा नियमित जोड़ो।
0: क्या बात?
1: अगर मान लीजिए मेरे घर में दो अखबार आते हैं तो मैं एक से भी काम चला सकता हूँ। मैं बहुत महंगे सूट ना पहन करके बीच के भी सूट पहन सकता हूँ। मैं कहीं बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची ना करके कम खर्च में भी काम चला सकता हूँ। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने फालतू खर्चों में कटौती करें और केवल मतलब इंटेलिजेंटली बुद्धिमत्तापूर्ण खर्च करें और थोड़ा थोड़ा बचाएं, तो हम भविष्य के लिए एक बड़ी पूंजी जोड़ करके अपने जीवन को भी सुरक्षित बना सकते हैं और जीवन को आसान भी बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा,
0: जहां आसानी से बचत हो जाए वहां हमें कर लेनी चाहिए, ये आपका मूल मतलब है।
1: फालतू खर्चों से बचना चाहिए, वो वक्त आ गया है।
0: मतलब सानो सौकत में हमने जाए बचत कर ले, योजनाओं के बारे में हम।
1: हाँ, जहां तक सरकारी योजनाओं की बात है, देखिए जैसे कि आम आदमी को निजी जीवन में पूंजी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से सरकार को भी विकास कार्यों के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है।
0: जी जी जी।
1: अब वो सरकार चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जैसे मान लीजिए अगर आपकी सरकार को कहीं पुल बनवाना है, कहीं बिजली घर बनवाना है, कहीं अस्पताल बनवाना है या कुछ और काम करना है लोक कल्याण का, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को भी एक बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती है। अब सवाल यह है कि वो पूंजी जुटाई कैसे जाए। तो जुटाने के देखिए बताऊं तीन चार तरीके किसी भी सरकार के पास होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: पहला तरीका तो यह है कि सरकार कुछ भी ना करे और बाहर से कर्ज ले ले, विदेश से कर्ज ले ले। एड इंडिया कंसर्टियम है, एशियन विकास बैंक है, विश्व बैंक है, बड़े बड़े पूंजीपति देश हैं, उनसे कर्ज ले ले। पहला विकल्प यह है। दूसरा विकल्प यह है कि वो जनता के ऊपर तरह तरह के टैक्स लगा दे, कभी सेल टैक्स है, कभी इनकम टैक्स है, कभी हाउस टैक्स है, कभी वाटर टैक्स है। इस तरह से मतलब टैक्सों के जरिए वो अपना
0: कलेक्शन कर सकती है,
1: पूंजी को जुटा सकती है। तीसरा तरीका एक ये है कि ना उत्पादन करे, उसका निर्यात करे देश को, तो उससे जो आमदनी होती है उससे पूंजी जुटा सकती है। और चौथा तरीका यह है कि वो ये सब विकल्प तो ना अपनाए, लेकिन अपनी ही जनता से पूंजी इकट्ठी करें और उसको जरूरत पड़ने पर ब्याज सहित पैसा वापस कर दें। अगर हम इन चारों विकल्पों पर विचार करें
0: जी,
1: तो पहला वाला विकल्प मैंने बताया था कि बाहर से कर्ज ले लें।
0: कर्ज ले लें जी।
1: उसमें क्या होता है कि जब हम किसी दूसरे देश से या किसी बड़ी वित्तीय संस्था से कर्ज लेते हैं, तो एक तो देश की बहुत बड़ी आय केवल ब्याज की अदायगी में निकल जाती है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: दूसरा वाला विकल्प था कि सरकार तरह तरह के टैक्स लगा दे, शुल्क लगा दे, तो उसको कोई भी सरकार, मैं समझता हूँ, पसंद नहीं करती है। बहुत ही मजबूरी में कोई सरकार कर लगाती है और इसको चूंकि आम जनता भी पसंद नहीं करती है बहुत ज्यादा शुल्क को, तो सरकार के लिए ये कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं होता। तीसरी चीज ये है कि निर्यात करे, इस तरह का उत्पादन करे कि हमें उससे आमदनी हो। तो उसमें इस समय स्थिति यह है कि हम हालांकि एक तकनीकी देश के रूप में बहुत ज्यादा विकसित हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी बाहर से आयात करनी पड़ती है और आप ये जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होती है। तो सरकार की एक बड़ी पूंजी जो है वो उसके मतलब आयात में ही खर्च हो रही है। तो अभी भारत इस स्थिति में नहीं है कि हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को निर्यात कर बचा सकें, पूंजी इकट्ठी कर सकें। चौथा जो विकल्प है वो ये कि साहब हम किसी भी देश से कर्ज वर्ज ना लें, केवल अपने ही जनता से आग्रह करें कि भाई आप अपनी बचत योजनाओं में पैसा लगाएं, जमा करें और जरूरत पड़ने पर जब भी आपको जरूरत हो उसे निकाल भी लें, ले लें, ब्याज सहित लें, टैक्स में छूट भी लें। तो उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जो देश की पूंजी होती है वो देश के भीतर रहती है और उस पूंजी का इस्तेमाल विकास कार्यों में होता है। कहीं बांध बनता है, कहीं अस्पताल बनता है, कहीं बिजली घर बनता है, कहीं कोई और रोजगार सृजित होता है। तो उसका लाभ एक तो देश को मिलता है, देशवासियों को मिलता है और हमें किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता।
0: जी जी।
1: तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत सारी बचत योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से प्रमुख हैं कुछ डाकघर आवर्ती जमा योजना 5 वर्षीय
0: जी,
1: एक दूसरी योजना है डाकघर मासिक आय योजना, वो भी 5 साल की है, 5 साल के राष्ट्रीय बचत पत्र है, 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने एक योजना शुरू की है, सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी है। और उसके अलावा और भी कई सारी योजनाएं हैं, जैसे डाकघर सावधि जमा है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एक बचत योजना है। तो ये सारी योजनाएं, इनमें न केवल कहना चाहिए कि बैंक की अपेक्षा ज्यादा ब्याज दर प्राप्त होती है, बल्कि इनमें आयकर की छूट भी प्राप्त होती है और इनमें जमा धन पूरी तरह से सुरक्षित रहता है।
0: जी जी, यानी देश के नागरिकों के पैसे से ही देश के काम भी हो जाए, उनकी पूंजी सुरक्षित होती रहे छोटी छोटी बचत से, और एक समय पे जब उनको जरूरत है

0: आदमी अपने उद्देश्यों को लेकर एक समय की अवधि में बचत करता है, तो जब उसको जरूरत है तो वो पैसा मिल भी जाता है, तो एक तरह से दोनों के
1: हाँ,
0: काम हो
1: इसमें
0: जाते
1: दोहरा
0: हैं।
1: लाभ है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि
0: जी
1: आम के आम, गुठलियों के दाम, तो इसमें दोहरा लाभ होता है कि एक
0: जी
1: तो देश को पूंजी मिल
0: मिल
1: जाती है
0: जाती
1: अंदर से
0: है,
1: ही, और
0: आपकी
1: दूसरा
0: बचत
1: उसका
0: हो जाती
1: विकास
0: है।
1: में भी इस्तेमाल हो जाता है।
0: तो इसमें परेशानी कहाँ रही, क्या लोगों तक ये बात पहुंच नहीं पा रही, क्या लोग जो रेस्पॉन्स चूंकि आप देख रहे हैं उसमें, क्या आजकल लोग इससे जुड़ रहे हैं, लोग
1: नहीं,
0: इसका लाभ।
1: परेशानी कोई नहीं आ रही है। जहां तक देखिए, सरकार ने बचत विभाग के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है। हम हमेशा मथुरा जनपद जो है लक्ष्य से ज्यादा पूर्ति करता है, तो जाहिर सी बात है कि बचत योजनाएं लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय हो रही हैं और लोग इसमें काफी पैसा भी जमा करा रहे हैं, और इसका श्रेय काफी हद तक हमारे डाकघरों को, बैंकों को और हमारे अभिकर्ताओं को है, जो इन योजनाओं को शहरी नहीं बल्कि गांव गांव तक ले जाते हैं।
0: जी, मतलब ऐसी सुदूर जो लोग रह रहे हैं जिनको
1: जी
0: जानकारी नहीं है, उनको एजुकेशन करना, उनको समझाना,
1: हाँ
0: और फिर वहां से छोटी छोटी पूंजी निकाल करके लाना,
1: जी,
0: ये उनके लिए बहुत
1: वो
0: बड़ी
1: जाते
0: बात
1: हैं और
0: है।
1: वो आम जनता को बचत योजनाओं के लाभ के बारे में बताते हैं, उनके काम को आसान करते हैं, उनसे पैसे इकट्ठे करते हैं और पोस्टऑफिस में जमा कराते हैं। जरूरत पड़ने पर कुछ योजनाएं बैंक के माध्यम से भी संचालित होती हैं, तो बैंक में भी मतलब एक सुविधा प्रदान करते हैं वो।
0: अभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने एक जनधन योजना की शुरुआत की थी, बहुत सारे खाते उसमें खुले, तो क्या ऐसा एक वर्ग जो अभी बैंकों से दूर था, उसकी बैंकों तक पहुंच नहीं थी, तो ऐसे जो खाते खुले हैं, क्या उनसे आपको लगता है कि निकट भविष्य में ये बचत की जो आदतें बढ़ेगी।
1: देखिए, प्रधानमंत्री जी की ये जो जनधन योजना है बड़ी
0: जी
1: महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत ही, मैं समझता हूँ कि लोक कल्याण की से जुड़ी हुई योजना है।
0: जी
1: और इस योजना का मैंने पहला तो अच्छा फल ये देखा है कि जो हमारे आवर्ती जमा खाते थे, अब
0: जी
1: उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जनधन खातों में जो पैसा आता है, किसी भी माध्यम से किसी भी योजना का पैसा आता है, तो लोग उसको रोकने की, बचाने की कोशिश करते हैं। फिर उस
0: जी
1: पर, जैसा कि आपने कहा, ब्याज भी मिलता है, तो फिर उसको फर्दर जो है आगे जमा कराने की कोशिश होती है। तो ये देखते हैं कि अगर बैंक में अकाउंट खुल गया है, तो अब पोस्ट ऑफिस में भी एक आवर्ती खाता खोल लें, हर महीने 200-500 रुपए महीना
0: रुपए
1: अगर
0: डाल
1: बचाए
0: दे
1: जा
0: उसमें।
1: सकते हैं तो वो
0: हाँ
1: जमा करा लें, जिससे भविष्य के लिए जो है एक अच्छी पूंजी इकट्ठी हो जाए। तो ये जनधन योजना दोनों तरह से हम लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। एक तो ये कि लोगों को जो है पैसा बचाने की आदत पड़ती जा रही है, दूसरे ये कि भविष्य के लिए उनके पास एक पूंजी भी इकट्ठी होती जा
0: पूंजी हो
1: रही
0: रही,
1: है।
0: और एक जो सिस्टम देश में है बैंकिंग का,
1: जी, वो विकसित हो
0: उसका
1: रहा है
0: उससे
1: लगातार।
0: विकसित हो रहा है, उससे लोग जुड़ रहे हैं इसमें। एक
1: बिल्कुल
0: एजेंट की बात आपने छेड़ी थी, तो एक एजेंट तो एक अभिकर्ता के माध्यम से करा लेना कितना आवश्यक
1: देखिए,
0: है।
1: मैं समझता हूँ कि अगर अभिकर्ता आपके कोई संपर्क में है या अभिकर्ता आपसे संपर्क करता है, तो हमें उसकी सुविधा निश्चित तौर पर लेनी चाहिए। वो इस कारण से कि अभिकर्ता जो है, हमें दो तरह से उनसे लाभ होता है, उनके दो पक्ष हैं। एक तो आर्थिक पक्ष तो है ही कि वो आपसे आपकी बचत को इकट्ठा करते हैं, फिर डाकघर में जमा करते हैं, जिस योजना में आप जमा कराना चाहते हैं या जो आपके अनुकूल है उस योजना में जमा कराते हैं। आपको डाकघर की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता है, आपका
0: जी
1: समय बचता है, आपको वो अपने विशेषज्ञता के अनुसार ये भी बताते हैं कि कैसे आप अपनी पूंजी को बढ़ा सकते हैं, दुगुना कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन उसका एक सामाजिक पक्ष भी है। सामाजिक पक्ष यह है कि अभिकर्ता केवल आपका आर्थिक सलाहकार ही नहीं होता है, वो बल्कि परिवार का एक सदस्य भी
0: सदस्य
1: होता
0: बन
1: है, जो
0: जाता
1: आपके सुख दुख में भी शामिल
0: है।
1: होता है, आपकी साइकी को, आपके मनोविज्ञान को, आपकी जरूरतों को बहुत अच्छी तरह से समझता है। और फिर वो क्या होता है कि पारिवारिक सदस्य के रूप में वो हमेशा हमसे जुड़ा रहता है, तो
0: जी
1: इससे कहीं ना कहीं समाज को जोड़ने में भी मदद मिलती है। हमारे अभिकर्ता देखा जाए तो दो तरह से काम करते हैं, एक तो
0: जी
1: देश के लिए एक पूंजी निर्माण का काम करते हैं, और दूसरे ये कि समाज को जोड़ने का भी काम
0: सामाजिक
1: करते हैं।
0: संरचना भी हमारी
1: जी, उसको मजबूत
0: संरचना
1: बनाते
0: बना
1: हैं वो कहीं ना
0: जी
1: कहीं।
0: जी जी और एक आर्थिक सलाहकार तो हमारे
1: जी
0: ही लोगों को एजुकेशन करते। चलते चलते थोड़ा सा दावे वाले पक्ष पे और हम बात करेंगे, कई बार लोगों में झिझक होती है कि हमारा पैसा जा रहा है, समय पर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हालांकि अब ऐसी बातें नहीं है, लेकिन जो दावे वाला पक्ष है, जब हमारी कोई स्कीम मैच्योर होती है,
1: जी
0: तो क्या आप आश्वस्त करना चाहेंगे कि उसमें कोई परेशानी
1: उस निश्चित रूप
0: नहीं
1: से उसमें कोई परेशानी नहीं है,
0: है।
1: क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो एजेंट ही हमारा संपादित कर देता है। फिर चूंकि डाकघर के माध्यम से जो योजनाएं संचालित होती हैं, वो सब भारत सरकार की योजनाएं हैं।
2: विकास पथ के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, आज की बचत कल की सुरक्षा। राजीव कुमार सक्सेना से भेंट कर रहे थे ओपी सिंह, ये आकाशवाणी का मथुरा।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए सहारनपुर और उन्नाव जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का।
2: सितंबर के पहले पखवाड़े में जिले में अलग अलग क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई। धार्मिक, प्रशासनिक, अपराध, आर्थिक, मौसम, शिक्षा, स्वास्थ्य और नगर विकास से जुड़ी गतिविधियां चर्चा में रही। शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी दिवस की गतिविधियां प्रमुख रही। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय समेत कई शिक्षण संस्थानों में क्विज, पोस्टर प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक और कविता पाठ आयोजित किए गए। कार्यक्रम में हिंदी को तकनीक और शोध से जोड़ने पर जोर दिया गया। जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिरों में विशेष सजावट की गई। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की झांकियां सजाई गई। भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम हुए। सहारनपुर पुलिस ने 20 रुपए के नकली सिक्के बनाने वाले बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। नगर कोतवाली पुलिस ने SOG और सर्विलांस टीम के साथ कार्यवाही कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 6400 नकली सिक्के यानी करीब 1.28 लाख रुपए की खेप बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक नकली सिक्कों की फैक्ट्री हरियाणा के सोनीपत में चल रही थी और गिरोह का नेटवर्क पंजाब से बिहार तक फैला था। पुलिस के अनुसार गिरोह अब तक 70 करोड़ से अधिक के नकली सिक्के बाजार में खपा चुका है। मुख्य सरगना उपकार लुथरा वर्ष 2001 से इस धंधे में सक्रिय था और दिल्ली पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। SSP अभिनंदन ने बताया,
3: इस गैंग का जो मुख्य सरगना है वो है उपकार लुथरा, जो कि मोहाली पंजाब का रहने वाला है, और इसमें कुल 8 लोग हैं पूरे गैंग में, जो कि अलग अलग चीजों को हैंडल करते थे। इनके पास से स्विफ्ट डिजायर और इको स्पोर्ट, ये हम लोगों ने बरामद किया है, और कुल 6400 सिक्के जो 20-20 के डिनोमिनेशन के हैं, लगभग 1,28,000 रुपए जिनकी कीमत है, उसको हम लोगों ने बरामद किया है, और इनके मोबाइल फोन्स जिसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं वो सब हम लोगों ने बरामद किया है। तो एक बड़े नेटवर्क को हम लोगों ने पकड़ा है और आगे भी इस पूरे नेटवर्क की कड़ी कहाँ कहाँ जुड़ेगी इस चीज का भी हम लोग इसको डेवलप करेंगे, और कौन कौन लोग अगर इसमें शामिल होंगे सभी को कानून की कार्रवाई की जद में हम लोग लाएंगे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
2: जिले में सरसावा पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 9 चोरी की बाइक बरामद की। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबवेल चोरी के मामलों में भी पुलिस कार्यवाही जारी रही। मौसम परिवर्तन के चलते जिले में इस माह बुखार का प्रकोप बढ़ा। जिले में करीब 2000 मरीजों की जाँच की गयी, जिनमें 1500 लोगों में टाइफाइड की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बदलते मौसम और बढ़ते बुखार के मामलों को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गयी है। बादल और बारिश के बीच कभी तेज धूप तो कभी उमस भी रही। धान और गन्ने की फसलें भी बीमारियों की चपेट में आई। विभिन्न संस्थाओं और अस्पतालों की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए। अंबाला रोड स्थित गुरु नानक बॉयज इंटर कॉलेज में CIS द्वारा आयोजित शिविर में चिकित्सकों ने लोगों की जांच कर स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया। अध्यक्ष रविंदर मिगलानी, महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर की उपस्थिति में इसका उद्घाटन राज्य मंत्री जसवंत सैनी द्वारा किया गया। नगर निगम एक मुफ्त समाधान योजना यानी OTS का करदाताओं ने लाभ उठाया। अब तक 913 आवेदन आए, जिनमें 695 का निस्तारण किया जा चुका है। श्री जहारवीर गोगावीर जी महाराज की स्मृति में आयोजित होने वाले सहारनपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा ऐतिहासिक मेला घुगाल 21 सितंबर से शुरू होगा। आयोजन के लिए महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम ने 1.99 करोड़ का बजट पास किया है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान के निर्देश पर जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से मेले में सुरक्षा, यातायात, सफाई, पेयजल, प्रकाश और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सहारनपुर अग्निशमन सेवा को 18,000 लीटर क्षमता वाला नया फायर टेंडर मिला। बड़े अग्निकांड की स्थिति में यह वाहन राहत और बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर जिले में सेवा संकल्प अभियान शुरू किया गया। यह 17 अक्टूबर

0: तक चलेगा। अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में सेवा और जनकल्याण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद वर्गों तक सेवा गतिविधियों को पहुंचाना और जन भागीदारी बढ़ाना है। जिला प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जागरूकता और अन्य जनसेवा से जुड़े कार्यक्रम किए जाएंगे।
1: सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का।
2: जनपद उन्नाव की तहसील सदर के अंतर्गत सराय कटियान स्थित औद्योगिक कॉरिडोर के इंटीग्रेट मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक क्लस्टर में प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने एक निजी वैश्विक पैकेजिंग कंपनी के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 40 एकड़ क्षेत्र में फैली लगभग 2000 करोड़ रुपए की निवेश वाली इस परियोजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा तथा आने वाले समय में लगभग 2.2 अरब बेवरेज कैन की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ यह प्लांट उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण विनिर्माण इकाई के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में निवेशकों को इन्वेस्टमेंट के लिए केवल जमीन ही नहीं मिलती, उसे बेहतर कनेक्टिविटी, चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था, मजबूती बुनियादी ढांचा, कुशल मानव संसाधन, व्यापक उपभोक्ता बाजार और अनुकूल नीति का पूरा इकोसिस्टम मिलता है। श्री नंदी ने कहा कि सरकार के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी में छूट और अन्य महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट का प्रावधान किया गया है, जिससे बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हुआ है। संस्कृत विभाग द्वारा उन्नाव में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पारिवारिक विरासत से जुड़े बदरका गांव को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से यहां बहुउद्देशीय परिसर का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिसका 75% से अधिक काम पूरा हो चुका है। यह परियोजना पूरी होने के बाद बदरका गांव न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए सुविधा संपन्न केंद्र बनेगा, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली गाथा को नई पीढ़ी तक पहुँचाने वाले महत्वपूर्ण विरासत स्थल के रूप में विकसित होगा। इस परियोजना के तहत मुख्य भवन में 450 लोगों की क्षमता वाला बहुउद्देशीय हॉल तैयार किया जा रहा है। इसके साथ महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग ग्रीन रूम व शौचालय, ब्लॉक स्टाफ रूम, कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, पेंट्री, लाइब्रेरी और स्टोर रूम बनाए जा रहे हैं। इससे आने वाले समय में यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा। इस योजना को लेकर पर्यटन एवं संस्कृत मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि बदरका को केवल एक स्मारक स्थल के रूप में नहीं बल्कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जीवन गाथा, संघर्ष और राष्ट्र भक्ति को नई पीढ़ी तक पहुँचाने वाले महत्वपूर्ण विरासत केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। जिले में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जे आर सिंह ने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए 2-2 बेड आरक्षित किए गए हैं व जिला अस्पताल में 6 बेड आरक्षित हैं।
3: उन्नाव में हम लोगों ने सभी एमओसी के साथ बैठक करके सबको निर्देशित कर दिया गया है कि अपने यहाँ 2 बेड, सीएससी पर 2 बेड और सीएमएस में जो जिला चिकित्सालय है वहाँ पे 6 बेड कम से कम इसके लिए आरक्षित कर लिए गए हैं। इसके अलावा दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था हमारे पास है। वर्तमान में जो टेमी फ्लू हमारे पास वो पर्याप्त है, सीरप भी पर्याप्त है। इसके अलावा जो मास्क वगैरह है वो हमारे पास अभी पर्याप्त है। इसके अलावा कुछ जो स्टेट से निर्देश मिले थे, स्टेट्स के निर्देश के माध्यम में हम लोगों ने डिमांड भी करी है कि आगे अगर केसेस बढ़ते हैं तो हम उसके हिसाब से हम लोगों ने दवाइयों की और अन्य जो लॉजिस्टिक है उसकी हम डिमांड भेज दी गई है।
2: वहीं स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है, जहां फ्रंटलाइन वर्करों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों में किसी तरह का भय न फैलने दें, उन्हें लक्षणों के आधार पर मरीजों को उचित सलाह देने के लिए कहा गया है। डॉक्टर जे आर सिंह ने इन्फ्लुएंजा के मरीजों के लक्षणों को 3 श्रेणियों में रखा है, जिसमें कैटेगरी ए में सामान्य लक्षण होते हैं जिनमें खांसी, हल्का बुखार, गले में खराश और बदन दर्द शामिल है। ऐसे मरीजों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें घर पर आराम करने, बुखार की दवा लेने और परिवार के अन्य सदस्यों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। कैटेगरी बी में लक्षण अपेक्षाकृत अधिक गंभीर होते हैं, इसमें खांसी, बुखार और बदन दर्द बढ़ जाता है। B1 श्रेणी में मरीजों को घर पर आइसोलेट रहने और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार उपचार लेने की आवश्यकता होती है। जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ प्रभारी न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कविता मिश्रा की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय के केंद्रीय हॉल में दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण व पराविधिक स्वयंसेवक उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ करते हुए प्रभारी न्यायाधीश द्वारा अधिक से अधिक वाद सुलह समझौते के आधार पर लोक अदालत में निस्तारित किए जाने का आह्वान किया गया, जहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में जनपद न्यायालय के विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक अधिकारीगणों द्वारा मोटर दुर्घटना, बैंक रिकवरी, वैवाहिक व विद्युत संबंधी वादों सहित राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 99,079 वादों का सफल निस्तारण किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा

0: प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आबोहवा के अंतर्गत वार्ता, तुलसी का दैनिक जीवन में महत्व। वार्ताकार हैं आरपी गुप्ता।

तुलसी नाना प्रकार की वनस्पतियों में एक सबसे शक्तिशाली वनस्पति है। ये पवित्र और पूजनीय है और इसे प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान माना गया है। इसी गुण के कारण इसे देवता का स्वरूप देकर धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल कर दिया गया है। तुलसी परम रोगाणुनाशक पौधा है, कई प्रकार के रोगों को ये नाश करती है। इसी कारण तुलसी का प्रयोग संक्रामक रोगों के फैलने पर अधिकतम किया जाता है। हमारे यहाँ श्वेत तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी कड़वी, चर्परी, हृदय को हितकारी, गर्म रक्त विकार, फसली पीड़ा खत्म करती है। काली तुलसी ठंड, कफ व जर को मिटाती है। कफ निकालने के लिए काली मिर्च के साथ तुलसी के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। आप बहुत सारे इस प्रकार का प्रयोग करते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वैज्ञानिकों तथा चिकित्सकों ने स्वीकार कर लिया है कि वास्तव में तुलसी का तेल क्षय रोग के कीटाणुओं को समाप्त कर देता है और मलेरिया को तुलसी द्वारा समाप्त किया जा सकता है। विदेशी चिकित्सकों ने अनुभव के आधार पर बता दिया है कि आंतों के सफाई का सबसे बढ़िया इलाज तुलसी दल को चबाकर खाना है, क्योंकि तुलसी का रस आंतों तक पहुंचता है, आंतों में जमी गंदगी तुरंत अलग कर देता है। स्त्री रोगों पर तुलसी के सेवन का बहुत ही गुणकारी असर होता है। सीने में दर्द, चर्म रोग, स्तन पीड़ा, योनि भ्रंश, प्रदर योनि के अन्य रोग स्त्रियों के तुलसी दल के प्रयोग से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी की गंध में एक और गुण है, वह शरीर को सड़ने से रोकती है। श्वास द्वारा तुलसी की गंध शरीर में जाकर शरीर की सफाई कर देती है। केवल क्षय और मलेरिया के कीटाणुओं से तुलसी की गंध से समाप्त नहीं होते, अन्य रोगों के कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। अनेक होम्योपैथिक दवाइयां तुलसी के रस से तैयार की जाती हैं। हमारे दैनिक जीवन में तुलसी को बहुत ही लाभदायक माना गया है, लेकिन तुलसी के प्रयोग के तुरंत बाद दूध नहीं पीना चाहिए, इससे कई रोग पैदा हो जाते हैं। अनेक औषधियों का उपयोग आयुर्वेद में दूध के साथ बताया गया है, लेकिन दूध के तुरंत बाद तुलसी का प्रयोग हानिकारक हो सकता है। लेकिन तुलसी का प्रयोग गंगाजल, शहद, सादे पानी के साथ बताया गया है। जब सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है तो सारा वायुमंडल बिगड़ जाता है, वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। ऐसे समय में घर में मौजूद जल और खाने योग्य समस्त चीजों में तुलसी के पत्ते डाल दिए जावें तो खराब पर्यावरण का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि तुलसी के पत्तों को पानी में कुछ देर पड़े रहने के बाद उस पानी से अगर स्नान किया जाए तो चर्म रोग बिल्कुल समाप्त हो जाता है। यदि पीने के पानी में तुलसी के पत्ते डाल दिए जावें तो वो पानी सारे पेट की बीमारियों को नष्ट कर देता है। तुलसी के सेवन का मनुष्य के चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तुलसी के सेवन से विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं, आध्यात्मिक विचार पवित्र रहते हैं, वासना की ओर मन नहीं भटकता तथा क्रोध भी नहीं आता है। तुलसी के नियमित सेवन से शरीर में चुस्ती फुर्ती पैदा होती है। तुलसी खून में खराबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि धोखे से या जानबूझकर विष खा लिया तथा विष रक्त में घुल मिल गया तो तुलसी के प्रयोग से विष खून से निकल जाता है। तुलसी को अमृत माना गया है। यदि प्रातः, दोपहर और संध्या के समय तुलसी का आप नियमित सेवन करें तो मनुष्य की काया पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है और वो किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं हो सकता। तुलसी का पौधा जहाँ होगा वहाँ सात्विक भावनाओं का विस्तार व वातावरण शुद्धि होगी। तुलसी में सभी देवों का निवास रहता है, इसलिए जो लोग तुलसी की पूजा करते हैं उन्हें

0: अनायास ही सभी देवी की पूजा का लाभ मिल जाता है। तुलसी का दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण महत्व है, इसलिए इसका प्रयोग करें और घर भर में जितने पौधे लगा सकते हैं तुलसी के पौधे लगाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे आबोहवा के अंतर्गत वार्ता, तुलसी का दैनिक जीवन में महत्व। वार्ताकार थे आरपी गुप्ता। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति दे रही हैं सुरभि शर्मा।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका करते हैं बड़ी बेसब्री से इंतजार। इस कार्यक्रम में न केवल दी जाती है आपको सही और सटीक जानकारी, करवाया जाता है प्यारे प्यारे गीतों से आपका मनोरंजन भी। श्रोताओं, हम चाहे कितने भी प्रयास कर, लेकिन ईश्वर की जो इच्छा है वही होता है। कहा गया है ईश्वर इच्छा बलियसी। आज का विचार है ईश्वर की इच्छा ही बलवती है। मनुष्य कितने भी प्रयास कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, लेकिन अंत में होता वही है जो ईश्वर चाहता है। हम सभी लोग ईश्वर में गहरी आस्था रखते हैं, अपने दिन की शुरुआत भी ईश्वर की आराधना से करते हैं, और दिन का जो खात्मा है यानी जब दिन हमारा ख़त्म होता है तब भी हम ईश्वर की आराधना करते हैं। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी पंथ को मानने वाले हों, लेकिन आप अपने ईश्वर की आराधना ज़रूर करते हैं। ईश्वर की आराधना एक माध्यम है आपकी आत्मिक संतुष्टि का। जब आप अपने ईश्वर को ध्यान में रखते हैं तो आप सारे क्रियाकलापों को एक बार अपनी नज़र से देखना शुरू करते हैं। आपके ईश्वर के द्वारा आपको ये बताया जाता है क्या सही है क्या गलत। आप एक सच्चे मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। आपका प्रयास रहता है आप कोई भी ऐसा कार्य ना कर रहे जिसे किसी व्यक्ति का नुकसान हो, किसी को दुख हो। आप अच्छे कार्य करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो शिक्षाएं, जो ईश्वर का जो संदेश है वो यही है, किसी के साथ गलत मत करो, सबका भला करो जितना आपसे हो सके। इसीलिए कहते हैं ना, जो ईश्वर चाहता है वही होता है और वही आपके द्वारा करवाया जाता है। इसीलिए सच्चे मन से अपने प्रभु का ध्यान रखें और सद्मार्ग पर चलें।

0: श्रोता, आज राधाष्टमी का महापर्व है। हमारे ब्रज की अलादनी शक्ति, हमारे श्री कृष्ण की अलादनी शक्ति का प्राकट्य उत्सव है। इसको लेकर शासन प्रशासन ने पूरी तैयारियां करी। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं हमारे जिलाधिकारी।
1: त्यौहार 19 सितंबर को बहुत ही धूमधाम, भव्य और दिव्य तरीके से बरसाना में मनाया जाएगा। मैं चंद्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी मथुरा, अपने सभी ब्रजवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जो प्रशासन द्वारा, पुलिस के द्वारा नियम कानून लागू किया गया है, उसका पालन करें, धैर्य रखें। जो होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं उनमें इंतजार करें, जब उनका मौका आए तभी दर्शन करने के लिए जाएं। इसके अलावा जहां जहां ट्रैफिक आदि के स्थान रोकने के लिए जो पार्किंग वगैरह बनाई गई है, वहीं अपने वाहन पालन करें। अपने सामान का, अपने जूता चप्पल का, अपने जहां रुके हुए वहीं छोड़ करके जाएं, ताकि दोबारा, चूंकि एंट्री एक तरफ से हो रही है, एग्जिट दूसरी तरफ से हो रही है और काफी लंबा है, तो सब लोग नियमों का पालन करें। और मुझे पूरा विश्वास है आपके सहयोग से, हम सबके सहयोग से मेला और राधाष्टमी का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, गंदगी ना फैलाएं, स्वच्छ बरसाना, हरित बरसाना और हरित राधाष्टमी, ये हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।
2: श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं, आज राधा अष्टमी का महापर्व है। राधा, जिनका नाम सुनते ही भक्ति में मन सराबोर हो जाता है। राधा का प्राकट्य उत्सव किस प्रकार मनाया जाता है, राधा नाम से किस प्रकार हमारे मन को आत्मिक शांति मिलती है, इन्हीं सारे विषय को लेकर हमने बातचीत करी। हमारे साथ है
3: सभी श्रोता भैया बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और भगवान श्री कृष्ण की आलादनी शक्ति राधा रानी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई। मैं सुशील गोस्वामी और नंदगांव के श्री नंद बाबा मंदिर का सेवायत अधिकारी हूं, और बरसाना राधा रानी लाडली जी मंदिर का मैं पूर्व रिसीवर हूं।
2: गुसाई जी, ये बताइए कि आज राधा रानी का प्राकट्य उत्सव है। राधा रानी हमारे कृष्ण की शक्ति हैं, हमारे ब्रज की जान है। राधा क्या है और इसको कैसे समझा जाए?
3: देखिए, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों ने इस धराधाम पर अपने भक्तों को सुख देने के लिए द्वापर काल में यहाँ इस धराधाम पर अवतरण लिया। लेकिन राधा रानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर की आलादनी शक्ति है, उनके प्राण तत्व हैं। अगर हम राधा तत्व की बात करें तो राधा रानी ने जो यहाँ जन्म के विषय में बात होती, तो राधा रानी अयोनि जाए, मतलब उन्होंने किसी गर्भ से जन्म नहीं लिया। शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है कि राधा रानी के माता पिता ब्रिशवान जी और कीर्ति मैया, जो पूर्व जन्म सुचंद और कलावती, उन्होंने हजारों वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर तप किया, और राधा रानी को स्वयं जो स्वक्ति स्वरूपा है और गोलोक के अधिष्ठात्री हैं, तो उनको पुत्री रूप में प्राप्त करने का वर मांगा कि हमें आप पर वात्सल न्योछावर करने का सुख मिले, वो हम आपसे मांगते हो। तो हजारों वर्ष तप करने के बाद फिर द्वापर काल में सुचंद जी ब्रिशवानु जी बने और कलावती जी कीर्ति

0: यह बनी तो रावल में यमुना नदी में एक बहते हुए कमल पुष्प में से राधा रानी प्रकट हुई हैं और फिर उन्हें वो पुत्री के रूप में प्राप्त हुई हैं। तो जिस दिन वो राधा रानी कमल के पुष्प से प्रकट हुई हैं तो वो भादों सुदी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की भोर की बेला थी, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे, तो वही उनके जन्म का समय फिर माना गया है। तो उसी अनुसार राधा रानी की क्रीड़ा भूमि जो ब्रिस्वान जी की 3 राजधानियों का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है, एक तो बरसाना रावल और एक बरहाना गांव है जो नंदगांव और कोसी जो वर्तमान में रोड है उसमें कोसी कला के निकट है, 3 किलोमीटर दूर है बरहाना। तो ये तीनों में सबसे ज्यादा सर्वाधिक समय जो ब्रिस्वान जी रहे हैं वो बरसाना रहे हैं। और बरसाना जो है वो आप देखते हैं कि बरसाना का वर्तमान में जो राधा रानी का लालडी जी का मंदिर है जिसको कीर्ति महल ब्रिश्वानु भवन कहते हैं वो पर्वत पे है, और ये कोई पर्वत साधारण नहीं है, स्वयं द्वापर काल के भगवान की इस द्वापर कालीन अवतरण लीला में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव यहाँ त्रिदेव पर्वत स्वरूप विराजे हैं। तो स्वयं साक्षात विष्णु जी गोवर्धन गिरिराज जी पर्वत के रूप में है और स्वयं जगत पिता ब्रह्मा जी बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत के रूप में है, और भगवान शिव रुद्र वो नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत पे हैं। आज हम जो राधा रानी का जन्मोत्सव मना रहे हैं वो 5254वां जन्मोत्सव है, और ठाकुर जी का हमने मनाया 5253वां, क्योंकि राधा रानी हमारी लाडली जी भगवान श्याम सुंदर से 11.5 माह बड़ी हैं।
1: आज के दिन क्या विशेष पूजा अर्चना मंदिर में की जाती है या नित्य प्रति जो सेवा होती है वही चालू रहती है?
0: नहीं, देखो राधा रानी का जो जन्मोत्सव है तो जन्मोत्सव पे तो हम आम जनमानस में हम अपने घर में किसी बालक का तो उस दिन कुछ ना कुछ विशेष होता है। तो ये तो लालडी जी हैं राधा रानी और ब्रजवासियों की तो प्राण है, भगवान श्याम सुंदर की वो अलादनी शक्ति है, बल्कि हम ये भी कहते हैं रसकों के जो भाव मिलते हैं कि दोनों एक ही तत्व है कृष्ण और राधा, लेकिन यहाँ दो रूप में अवतरित हुए हैं अपनी लीला का विस्तार करने के लिए। तो एक प्राण दो देही, यानी प्राण एक ही है देह दो है। तो राधा रानी को जो प्राकट हुआ है जो कमल के पुष्प से वो उस समय भादों की अष्टमी के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन मूल नक्षत्र था। तो राधा रानी को ब्रजवासी एक नाम मूलू भी कहते हैं कि मूल नक्षत्र में पैदा हुई है। तो उनके 4 बजे प्राकट से पूर्व पहले बरसाना हमारे राधा रानी मंदिर में मूल शांति होती है। मूल शांति में मतलब 27 कूप का जल मंगाया जाता है, 27 कुंड सरोवरों का जल मंगाया जाता है, 27 वृक्षों की पत्ती आती है, 27 ब्रज के तीर्थों की रज आती है, और सब ग्रत है, दुग्ध है, शर्करा है, मधु शहद है, इन सब से राधा रानी का मूल शांति अभिषेक होता है पहले। तो ये और 3:30 बजे से प्रारंभ हो जाता है, आधा घंटा मूल शांति चलती है, और उसके बाद फिर ब्रह्म वेला में जो उनके प्राकट का जो समय है ठीक 4 बजे राधा रानी का जन्म महाभिषेक कराया जाता है और जिसके सभी भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं। तो उस समय अथाह सागर समुद्र उमड़ पड़ता है, रात से ही लोग लाइन में बैठ जाते हैं कि लालडी जी के अभिषेक के दर्शन करेंगे। 4 बजे ही मंदिर में घंटे घड़ावल शंख की अपनी मधुर ध्वनि के साथ विप्र ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार और जो नारायण भट्टी जी के वंशज हैं ऊंचे गांव के वो महाराज श्री वहां स्वयं रहते हैं और उनके द्वारा यह अभिषेक संपन्न कराया जाता है, और कई क्विंटल दूध दही शहद केसर इत्र शहद सरका सब से राधा रानी का पंचामृत अभिषेक जो कि 1 घंटा अनवरत रूप से चलता है, और उसके सब भक्त दर्शन करते हैं और स्वयं को कृतार्थ करते हैं। कहते हैं कि भोर में राधा रानी के जो अभिषेक के दर्शन एक बार कर ले उसको समस्त पापों से बिना किसी प्रयास के निवृत्ति मिल जाती है, ऐसा हमारे धार्मिक आचार्य वर्णन करते हैं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार। तो यही वजह है कि उनके जो भक्त हैं राधा रानी के वो खास 1 वर्ष तक इस दिन का इंतजार करते हैं, और जब उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त होता है उनके दर्शन करते हैं।

लालजी जी का श्री विग्रह, उसको पीले वस्त्र लपेट कर और वहां के पुजारी उनका अभिषेक करते हैं। ऊपर उनके ऊपर मिट्टी की हांडी होती है, उसमें छेद करते हैं और उसको उनके श्री विग्रह के ऊपर पकड़ के रखते हैं। तो जो भी सामग्री डालते हैं वो हांडी में डालते हैं और उसके छेदों में से निकलकर वो लालडी जी के श्री विग्रह पे आती है। तो इतना विहंगम आनंददायी नैनाभ राम जो

दर्शन कराए जाते हैं, सब भक्त लोग मंगल आरती करते हैं, फिर लालडी जी गर्भगृह में जाती हैं, फिर पुजारी लोग उनका श्रृंगार शुरू करते हैं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है तो विशेष पीले वस्त्र धारण कराए जाते हैं, पीली पोशाक जो खास तौर से राधा रानी पर बनती है, जिनमें चांदी के तारों का जड़ा बहुत ही मोती माणिक लगे होते हैं, बहुत सुंदर दिव्य वस्त्र, क्यों आज उनका जन्म है। पीला रंग जो है वो मंगल सूचक है, मांगलिक है, तो पीली पोशाक धारण करा के 8 बजे फिर लालडी जी की श्रृंगार आरती होती है। तो श्रृंगार आरती तो रोज होती है, लेकिन आज उनके जन्म के बाद है तो वो एक नवजात बालिका के रूप में है, तो बहुत हल्का श्रृंगार कराया जाएगा, ज्यादा बड़े मुकुट चंद्रका आदि धारण नहीं कराते, बहुत छोटी सी किशोरी। तो आज जितने भी जो लाखों लोग श्रद्धालु ब्रज में राधाष्टमी पर राधा रानी के दर्शन करने बरसाना आ रहे हैं, वास्तव में वो परम सौभाग्यशाली बड़भागी हैं जिन्हें राधा रानी मंदिर में आकर दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और वो भी बहुत बड़भागी हैं जो आपके आकाशवाणी के माध्यम से इस राधा रानी के जन्मोत्सव की लीला को श्रवण कर रहे हैं, जो भगवत कथा भी हरि भगवान नारायण की कृपा से सौभाग्य मिलता है, तभी श्रवण करने को अवसर मिलता है। तो हम तो ये सब आपके श्रोताओं भैया बहनों से कहेंगे कि बरसाना राधाष्टमी का जो उत्सव है इसको कोई साधारण उत्सव ना समझे, बहुत अनंत पुण्यों के आपकी कृपा के भाग्य से आपको उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर मिलता है। तो बरसाना में आप पधारे, 9 बजे से बरसाना में हमारा ये जो उत्सव चल रहा है, बधाई का जो नंदगांव बरसाना की जो संयुक्त समाज गायन है, जो बरसाने की शोभा बिना नंदगांव के नहीं है और नंदगांव की शोभा बिना बरसाना के नहीं है, ये हजारों वर्ष पुरानी हमारी साझी संस्कृति के दर्शन आज भी जन्माष्टमी और राधाष्टमी पर दिखाई देते हैं। समस्त नंदगांव के 500-700 जो गोस्वामी जन है सब अपने पारंपरिक धोती बगलबंदी पगड़ी पहनकर आते हैं, बधाई गायन होता है, कुमार कृपा की दृष्टि भई मोहन हित प्रकटी श्यामा। तो वो जो अभी हमने बताया ना कि राधा रानी की कृपा से यहाँ अवतरण हुआ है ठाकुर जी और श्री जी का, तो मोहन हित प्रकटी श्यामा ठाकुर जी के हित के लिए उनकी समस्त जो यहाँ पर लीला है उनमें उनका साथ देने के लिए राधा रानी भी साथ में अवतरित हुई है, क्यों एक प्राण दो देही है, दोनों अभिन्न है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो ये 2 बजे तक अपनी राजभोग आरती तक ये राधा जन्मोत्सव चलता है, उसके बाद फिर राधा रानी की राजभोग आरती के बाद फिर वो विश्राम में जाती है, फिर संध्या काल में विशेष उत्सव है, शाम को 4:30 बजे राधा रानी अपने गर्भगृह से विशेष डोला में पालकी में सवार होके और मंदिर के प्रांगण में एक सफेद छतरी है नीचे संगमरमर की बनी, वहां आती है वो भक्तों को दर्शन देने के लिए। भाव ये है कि जब राधा रानी को जो बधाई देने लोग आ रहे हैं तो राधा रानी भी उस दिन अपनी कृपा बरसाने के लिए उन भक्तों के बिल्कुल बीच में पहुंच जाती है, उनके बिल्कुल निकट, जो राधा रानी का नाम है करुणामयी कृपामयी दयामयी, और इस नगरी का नाम भी है बरसाना, जहाँ बरसती रहती है कृपा। तो वो सवारी आती है बड़े पुष्पों से ऊपर से पंखड़ियों से बरसा, तो वही भाव आता है देवता आकाश ठाड़े पुष्पन की वर्षा करें, मंदिर की अटारी से राधा रानी पर गुलाब की पंखड़ियों की वर्षा इत्र की वर्षा करते हैं पुजारी लोग, और डोला में राधा रानी के जय घोष करते हुए उत्सव पे छतरी में आते हैं, और उस दिन विशेष पुआ प्रसाद वितरित होता है संध्या काल में, और गोस्वामी जन समाज गायन करते हैं, 2 घंटे तक ये विशेष दर्शन सफेद छतरी में होते हैं। और उस दिन की एक विशेष ये है, इसमें कन्याओं की विशेष महत्वता दी गई है, और अपने वर्तमान में जिसको हम कहते हैं नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, ऐसा नहीं है कि पुरुष प्रधान समाज समझ बैठे कि पुजारी पूजा करते हैं। जब राधा रानी संध्या काल में सफेद छतरी से जब उनकी वापसी होती है पालकी में विराजमान होकर अपने भवन में जाती है गर्भगृह में, तो वहां उस दिन मातृशक्ति गोस्वामी परिवार की जो महिलाएं बेटियां हैं उनकी, उस दिन वो उनकी विशेष आरती करती हैं। ये एक विशेष दर्शनीय दृश्य होता है कि वहां देखते हैं कि पुजारी नहीं होता है, वो सब कन्याएं बड़ा मंगल ताल सजाकर उसमें दीपक रख के और श्री जी की आरती उतारती हैं, और भाव ये है कि नवजात कन्या है, इतनी सुकुमारी है, इतनी सुंदर है, देश विदेश के लोग दर्शन करने आए, तो
किसी की नजर ना।

0: लग जाए, ब्रज का भाव है ना ये,
1: जी
0: कि अपने लाडली जी को किसी की नजर ना लगे। तो उस भाव से वहां वो कन्याएं, जितनी भी उनके परिवार की जो बेटियां होती हैं, चाहे वो 5 साल की है चाहे वो 75 साल की है, जिनको अवसर मिलता है वहां आने का, वो उस दिन आरती उतारती है। तो भक्त इस दृश्य को देखकर धन्य हो जाते, और फिर श्री जी अपने भवन में विराज गए। और फिर रात को ही 9 बजे लाडली जी की शयनारती के बाद फिर वो विश्राम में। तो ये हमारे आज के राधाष्टमी उत्सव की जो सुबह उनके अभिषेक से लेकर उस शयन पर्यंत तक की जो विशेष जो लीला है,

अब डालते एक नजर आज के समाचारों पर। राधा रानी के प्राकट्योत्सव के साक्षी बनेंगे लाखों श्रद्धालु। राधा रानी के प्राकट्योत्सव पर श्रीधाम बरसाना में श्रद्धालुओं का आसमान छूता नजर आ रहा है। देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने श्री जी महल पहुंचकर राधा रानी के दर्शन किए। इस दौरान हर किसी की जुबान पर राधे राधे का नाम रहा। लोगों ने गहवर वन की परिक्रमा लगाई और बरसाना की गलियों में भक्ति भाव के साथ भ्रमण कर राधा रानी के जन्म का जश्न भी मनाया। उनके चेहरों पर उल्लास और भक्ति भाव सभी को अपनी ओर खींचता नजर आया। राधाष्टमी महोत्सव को लेकर शुक्रवार शाम एसपी सिटी ने रावल गांव पहुंचकर मंदिर परिसर, परिक्रमा मार्ग, संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं के आवागमन, सुरक्षा, पार्किंग व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी सिटी ने बताया कि राधाष्टमी महोत्सव में रावल में करीब 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा, यातायात और पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को भीड़ नियंत्रण, यातायात सुचारू रूप से रखने, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। राधा रानी के प्राकट्य स्थली गांव रावल में राधाष्टमी पर्व को लेकर भक्ति और उल्लास का माहौल है। राधाष्टमी की पूर्व संध्या पर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। शाम से ही मंदिर में भजन कीर्तन का दौर शुरू हो गया। मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर सभी तरीके तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रावल मंदिर में राधा रानी का छठ पूजन महावन की राधा रानी की प्राकट्य स्थली रावल स्थित राधा रानी मंदिर में मंगलवार शाम राधाष्टमी की पूर्व संध्या पर छठ मैया का पूजन आयोजन किया गया। सेवायत पुजारिन रमा कल्लाल, शालिनी कल्ला ने हलुआ, पूड़ी, कोमरी, नरियल, धूप दीप से विधि विधान कर पूजा अर्चना करी। इस दौरान गांव की महिलाएं भजन गाते हुए मंदिर पहुंची और छठ पूजन में शामिल हुई। राधाष्टमी पर राधा कृष्ण के शाश्वत प्रेम की गवाह नंदगांव बरसाना के रिश्तों की मिठास एक बार फिर देखने को मिलेगी। समाज गायन में नंदगांव बरसाना के समाजी केवल पदों का गायन ही नहीं करेंगे बल्कि समधी के रिश्ते की एक दूसरे से गले मिलकर ब्रज की अनूठी परंपरा को भी जीवंत करेंगे। इस दौरान बरसाना के वयोवृद्ध ग्रुप की ओर से नंदगांव के वयोवृद्ध ग्रुप को समझौरा भी किया जाएगा। अब डालते एक नजर आज के इतिहास पर, क्या कहता है आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से। आज ही के दिन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध और ऐतिहासिक भाषण दिया। इसी दिन न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिला। 1957 में अमेरिका ने नेवादा रेगिस्तान में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। वहीं 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1983 में कैरिबियन द्वीप समूह स्थित सेंट किट्स एंड नेविस को ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता मिली। वहीं 2000 में सिडनी के ओलंपिक में भारतीय भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। यह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। क्या करें क्या ना करें तो बातचीत करते विषय के बारे में आम बन जाते हैं। खास जब भी आप कहीं पूजा स्थल पर पूजा अर्चना करने जाएं, अक्सर लोगों की आदत होती है अपने साथ फूल पूजा की सामग्री ले जाते हैं, पॉलीथीन में रख कर ले जाते हैं, दोने में रख कर ले जाते हैं। आपने पूजा अर्चना करी लेकिन उसके बाद वही पॉलीथीन की थैली, वही कागज़ के लिफाफे या दोना पत्तल जो है वो वहीं छोड़ कर आ जाते हैं। आपने अपनी पूजा अर्चना पूरी कर ली लेकिन उसके बाद आपने उस परिसर में जिसे आप पूजा स्थल मानते हैं, जहां आप वहां जाकर पूजा करते हैं, वहीं वो सारी गंदगी छोड़ के आ जाते हैं। तो आपकी पूजा करने का क्या उद्देश्य रहा? इसीलिए जहां आप स्वयं खुद को भूलकर ईश्वर की आराधना करने जाते हैं, वहां को साफ सफाई को लेकर आपको बहुत ज़्यादा सजग और सतर्क रहना चाहिए। आप जो भी सामान अपने साथ लेकर जाते हैं, पूजा सामग्री जो आपने वहाँ अर्पित करी, उसके बाद जो भी वेस्ट बचता है उसको अपने साथ घर लेकर आएं, डस्टबिन में डालें, आसपास कोई डस्टबिन हो वहाँ डालें। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो निसंदेह आप एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, अपने शहर को भी साफ रहेंगे, क्योंकि जहाँ स्वच्छ

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति दे रही थी सुरभि शर्मा, संयोजन ओपी सिंह का था। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत उस्ताद बिस्मिल्ला खां का राग अलहिया बिलावल में निबद्ध शहनाई वादन।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खां का राग अलहैया बिलावल में निबद्ध शहनाई वादन। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य 2026 के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं कमल किशोर बड़ाई और कौशिक रॉय। आइए विज्ञान भवन चलें।
1: नमस्कार, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये 2 दिनों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इस सम्मेलन का उद्देश्य आज विश्व के समक्ष उपस्थित गंभीर पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी चुनौतियों पर व्यापक रूप से संवाद करना है, विचार विमर्श करना है और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के लिए एक प्रतिष्ठित वैश्विक मंच उपलब्ध कराना है। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के न्यायिक और पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता और अन्य प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस सम्मेलन की विभिन्न गतिविधियों का पूरा विवरण हम आप तक पहुंचाने के लिए मैं हूं आपका दोस्त कमल किशोर बड़ाइक और मेरे साथी हैं कमेंटेटर कौशिक रॉय। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और उससे निपटने की क्षमता, सर्कुलर इकोनॉमी, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र, सतत ऊर्जा समाधान समेत कई विषयों पर चर्चा होगी। तकनीकी सत्रों में जलवायु न्याय, पर्यावरण कानून एवं शासन, वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वन संरक्षण जैसे पुनर्स्थापन जैसे कई विषय शामिल हैं।
2: नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल ब्रॉडकास्ट ऑफ द conference that has been organized by the National Green Tribunal, India's apex and specialized statutory body, which has been established to handle environmental matters. And the conference is on the future of environment and climate dynamics. This 2-day conference will be inaugurated by the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, in just a short while from now. And now the conference has been addressed by the Honorable Attorney General for India, Sri R. Venkat Ramani.
3: As far as making and building our lives is concerned, Indian spiritual thought had realized and underscored the respect long ago. We just need a global common good environmental regulatory regime on the use of our natural resources beyond the pious declarations, where minimal rules on do's and don'ts, on common economic conduct and common rules of enforcement should prevail. Disasters like what happened in Nepal are grim reminders. Mountains and glaciers are twins of nature, and they cannot be asked to yield to our terms. India can always set examples by the balancing paths it has chosen so far, while maintaining that balance can be a challenge. International environmental justice, beyond treaties and declarations at the practical level, must integrate with all other global transactions and ask of us to envision a common enforceable environmental justice code. For instance, the ecosystem-based disaster risk reduction program under UNEP is a great example of prevention measures. It is possible to conceive of many such measures encompassing various aspects of the environmental climate justice. If felling even one tree is anti-earth, I suppose our inability to address hunger and want will be anti-human. The Pact for the Future Knowledge, Future acknowledges these basic human challenges, and we must and we can deal with both. I think the human genius is capable of fashioning many more answers. We are thus assembled to debate the need to recalibrate the environmental justice and climate action issue along with other common human dimensions, focusing on the implications for energy and food security, housing, urban and rural ecosystems, and their attendant problems of health and access to basic resources and equally economic opportunities. We are assembled to evaluate our legal regimes and their inadequacies in addressing complex questions between economic transactions and the fulfillment of human needs, again on an equal status, as we have moved globally into a connected world so far, far, far different from what it was a few decades ago. The task is to script codes of enforcement. Earth science as the most defining science of all sciences, indispensable for planning everything about human existence, our economics, and our social arrangements, has come to become the connecting knowledge fabric. Earth science is itself a new human consciousness, where human rights and earth rights will coalesce. General citizen environment

वहां लिए चलते हैं जहां से आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित

0: साथियों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दुनिया भर के अलग अलग हितधारकों को एक साथ लाने के लिए पर्यावरण और जलवायु की गतिशीलता का भविष्य इस विषय पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस खास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी का मकसद पर्यावरण से जुड़ी अहम चुनौतियों पर सार्थक बातचीत, जानकारियों के आदान प्रदान और साथ साथ मिलकर काम करने के लिए एक बेहतरीन ग्लोबल प्लेटफॉर्म तैयार करना है। यह कॉन्फ्रेंस दुनिया भर के जाने माने एक्सपर्ट्स, जुडिशियल और कानूनी पेशेवरों, पॉलिसी निर्माताओं, शिक्षाविदों और मुख्य हितधारकों को एक साथ लाती है। और अब प्रधानमंत्री जी रिमोट का बटन दबाकर एनजीटी मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे।
1: एनजीटी मोबाइल एप्लीकेशन एक ऐसा स्मार्ट प्लेटफॉर्म जो न्यायिक सेवाओं को आपके मोबाइल तक लेकर आता है। अब अपने केस की जानकारी प्राप्त करना पहले से कहीं अधिक आसान है। बस केस नंबर, ईयर और जोनल बेंच दर्ज करें और कुछ ही सेकंड में केस स्टेटस आपके सामने होगा। अगली सुनवाई की तारीख जाननी हो या कॉज लिस्ट देखनी हो, सभी आवश्यक जानकारी अब आपकी उंगलियों पर उपलब्ध है। जजमेंट एंड ऑर्डर सेक्शन के माध्यम से आप अपने केस से संबंधित आदेश और निर्णय कभी भी देख सकते हैं। वहीं डिस्प्ले बोर्ड फीचर आपको एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की उस समय की चल रही कार्यवाही से जुड़े रखता है। ई फाइलिंग, लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स, करियर एंड रिक्रूटमेंट तथा अन्य महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस भी अब एक ही ऐप पर उपलब्ध हैं, जिससे समय की बचत होगी और जानकारी तक आपकी पहुंच और भी आसान बनेगी। आप अपनी आवश्यक जानकारी को फेवरेट्स में सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर केवल एक क्लिक में उसे फिर से देख सकते हैं। एनजीटी मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य केवल डिजिटल सुविधा प्रदान करना नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को अधिक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और सिटीजन फ्रेंडली बनाना है। आइए तकनीक को अपनाएं, पर्यावरण संरक्षण के इस मिशन में अपनी भागीदारी बढ़ाएं और न्यायिक सेवाओं को एक नई डिजिटल पहचान दें। एनवायरमेंटल जस्टिस, एनी टाइम, एनीवेयर।
2: तो अब एनवायरमेंटल जस्टिस,
3: दैट वाज अ शॉर्ट फिल्म ऑन द फीचर्स ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मोबाइल एप्लीकेशन एंड द plenary session is packed with the delegates and domain experts and legal numeraries and the honorable judges of the honorable high courts of various states of India and also the Supreme Court of India, and everyone is eagerly looking forward to the inaugural address of the Future of Environment and Climate Dynamics Conference by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
0: जी कौशिक जी, दो दिवसीय सम्मेलन में विश्व भर से न्यायाधीश, पर्यावरण विशेषज्ञ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, राज्य न्यायिक अकादमियों के प्रतिनिधि, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्य यहां पर मौजूद हैं।
3: एंड नाउ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी।
4: कार्यक्रम में उपस्थित भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी भूपेंद्र यादव जी, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, या हॉल में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव देवी और सज्जनों, प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट

क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है। मुझे खुशी है एनजीटी की ये कॉन्फ्रेंस उसी मिशन को आगे बढ़ा रही है। इस आयोजन के लिए मैं एनजीटी के सभी पदाधिकारियों को, इससे संबंधित सभी महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं अक्सर कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है। यहां बहुत सारे ग्लोबल साउथ के मेरे साथी बैठे हैं, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है, 6 गुना ज्यादा। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है और मैं हर भारतवासी से कहूंगा आप भी दम दिखाइए। हमने अपनी परंपराओं और उनकी ताकत को भी दुनिया के सामने रखा है। इन्हीं विषयों को लेकर पेरिस में COP21 के दौरान हमने कन्वीनियंट एक्शन कंटिन्यूटी फॉर चेंज उस बुक को भी लॉन्च किया था। हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है। साथियों, आज का भारत पर्यावरण सुरक्षा के अपने प्राचीन विचारों को आधुनिक विजन में पिरोते हुए आगे बढ़ रहा है। बीते 12 वर्षों में पर्यावरण से जुड़े हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में भारत ने असाधारण प्रगति की है। हमारा बड़ा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर रहा है और इसने पर्यावरण सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है, मैं G20 के बड़े बड़े लोग हैं ना उनके सामने बता रहा हूं जी, इकलौता भारत ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। ये हिंदुस्तान की ताकत की मैं बात कर रहा हूं।

नॉन फॉसिल फ्यूल सोलर एनर्जी कैपेसिटी कार्बन एमिशन पर रोकथाम हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है। आप आंकड़ों को देखिए, 12 साल पहले भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट थी, 12 साल पहले 2 गीगावाट। अगर यहां वकील बैठे हैं तो जरा ध्यान रखें, आंकड़े कभी काम आएंगे। आज यह 160 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। 2 गीगावाट से 160 गीगावाट 12 साल में। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों को ही सोलर पावर जनरेशन का केंद्र बनाने का मिशन शुरू किया। इस योजना के तहत अब तक 50 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लग चुके हैं। ये दुनिया के कई देशों के टोटल घरों से ज्यादा है। इसके लिए सरकार ने हर घर को करीब 80,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी है। कुसुम योजना के तहत सरकार ने 30 लाख किसानों के खेतों में सोलर पंप्स लगाने का काम किया है। हमने वन नेशन वन ग्रिड का एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी पूरा कर लिया है। इतना ही नहीं, घरों में एलईडी बल्ब जो बिजली की बचत करने में सफल पुरवार हुआ है, करोड़ों की तादाद में एलईडी बल्ब घरों में पहुंचाए हैं। और इन प्रयासों के परिणाम आज हमारे सामने हैं। अकेले सोलर एनर्जी से ही भारत में करीब, ये आंकड़ा भी वकीलों के लिए है, भारत में करीब 20 करोड़ टन कार्बन एमिशन रोकने में सफलता मिली है। साथियों, सोलर एनर्जी के साथ साथ क्लीन एनर्जी के दूसरे सेक्टर में भी भारत ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। बीते 12 साल में देश की विंड एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है, हाइड्रो एनर्जी कैपेसिटी में काफी बढ़ोतरी हुई है, और अब देश न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन पर तेजी से काम कर रहा है। और जो लोग एनवायरनमेंट पर लंबे लंबे भाषण झाड़ते रहते हैं, ये जब न्यूक्लियर एनर्जी का काम मैं आगे बढ़ाऊंगा, जब अदालतों में जाके खड़े हो जाएंगे रोकने के लिए। इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाने का रास्ता बनाया गया है। इन कोशिशों की वजह से आज भारत की नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी करीब करीब 4 गुना बढ़ गई है। भारत कोयले के और अधिक स्वच्छ उपयोग के लिए कोल गैसिफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दे रहा है। साथियों, भारत आज क्लीन मोबिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है, और ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है।

ये क्लीन मोबिलिटी के एक नए युग की शुरुआत है। साथियों, 12 वर्षों में हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या में करीब 950 गुना का इजाफा हुआ है, 950 गुना। 2014 से पहले के साल में भारत में 3000 से भी कम ईवी की बिक्री थी, 3000। वहीं पिछले साल करीब 25 लाख ईवी भारत में बिकी है, यानी ईवी रिवॉल्यूशन के इस अवसर को भारत पूरी ताकत से अपना रहा है और इससे पर्यावरण की भी मदद हो रही है। हमारे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर फास्टैग की आधुनिक व्यवस्था से भी टोल बूथ पर वेटिंग कम हुआ है। इससे टोल बूथ पर जो फ्यूल वेस्ट होता है वो बंद हुआ है। साथियों, 2014 तक हमारे देश के 5 शहर में करीब 250 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क था, ये भी मेरे वकील मित्र याद रखे हैं। 2014 के पहले सिर्फ 5 शहरों में 250 किलोमीटर से कम, आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चल रही है और भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास 1000 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो नेटवर्क है। साथियों, रेलवेज का लगभग 100% शत प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन होने से भी करोड़ों करोड़ लीटर डीजल जलने से बचा है, पर्यावरण की रक्षा हुई है। इसी महीने कुछ दिन पहले करीब 3000 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया है। इस पर चलने वाली हर ट्रेन एक बार में सैकड़ों ट्रक्स का लोड लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है। डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन अपने आप में ऐतिहासिक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे कितने बड़े लेवल पर पर्यावरण की भी मदद होती है। साथियों, देश में आज करीब 5000 किलोमीटर लंबे वाटरवेज पर ट्रांसपोर्टेशन होने लगा है, जो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली मोबिलिटी है। इन पर चलने वाला एक स्टैंडर्ड इनलैंड वेसल एक यात्रा में दर्जनों ट्रक्स के बराबर लोड ले जाता है। इससे भी पर्यावरण संरक्षण में बड़ी सहायता मिल रही है। साथियों, अकेले मोबिलिटी सेक्टर में ये सारे बदलाव इस बात के गवाह हैं कि हमारा डेवलपमेंट स्पीडी भी है और सस्टेनेबल भी है। साथियों, आज करोड़ों लोगों की भागीदारी से भारत में जल संरक्षण पर भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। मुझे खुशी है कि देश में 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। कैच द रेन अभियान के तहत देश में करीब 1.5 करोड़ वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं जिसमें बारिश का पानी संरक्षित हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए आज 2 करोड़ से ज्यादा किसान सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं से जुड़े हैं। पर ड्रॉप मोर

0: क्रॉप जैसे इनिशिएटिव से भी पानी की बचत हो रही है। श्री अन्न यानी मिलेट्स, ये भी एक बहुत बड़ा सफल उदाहरण है। भारत मिलेट श्री अन्न की पैदावार को बढ़ावा दे रहा है। जो पानी की खपत कम करते हैं, बीते वर्षों में देश में मिलेट्स का उत्पादन भी बढ़ा है और निर्यात भी बढ़कर करीब 1.5 लाख टन हो गया है। इससे किसानों के लिए नए मौके तो बन ही रहे हैं, पानी की भी बचत हो रही है और इसी मॉडल के कारण दुनिया भी हमारे साथ जुड़ रही है। भारत के प्रयासों के कारण 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। साथियों, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत आज देश में करीब 12.5 लाख हेक्टेयर में नेचुरल फार्मिंग के 24,000 क्लस्टर्स बन चुके हैं। यही नहीं, देश में क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की भी करीब 3,000 वैरायटीज विकसित हो चुकी हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देकर भी हम कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर रहे हैं। साथियों, हमारे ये प्रयास कितने व्यापक है इसका एक उदाहरण भारत का फॉरेस्ट कवरेज भी है। ये भी मैं वकील मित्रों के लिए बताता हूं, बीते 12 वर्षों में हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर 22% से ज्यादा बढ़ा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के तहत भी देश में करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं और यह अभियान निरंतर जारी है। साथियों, पर्यावरण के सामने एक बड़ी चुनौती प्लास्टिक वेस्ट की भी रही है और इसलिए भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई है। हमने रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल के मंत्र के साथ सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। आज भारत में हर रोज हजारों टन वेस्ट को रिसाइकल किया जा रहा है। गोवर्धन योजना के माध्यम से गांवों में गोबर और दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट को भी उपयोगी संसाधन में बदला जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि वेस्ट को समस्या न मानकर उसे वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पर एक रिसोर्स में बदला गया है। साथियों, ये सारे के सारे आंकड़े केवल भारत के विकास के आंकड़े नहीं है, ये मानवता के भविष्य के लिए भारत के योगदान के आंकड़े हैं। साथियों, हमारा सांस्कृतिक विचार है माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वीव्याः, अर्थात ये धरती हमारी मां है और हम इसकी संतान है। इसी सोच के साथ भारत भी एक रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल भविष्य बनाने के लिए काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में होने वाले डिस्कशंस, उससे जो नए विचार नए समाधान सामने आएंगे, वो हो सकता है कि आने वाले पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संबल बनकर के निकलेंगे। एक बार फिर इस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: But ladies and gentlemen,

अनुराधा पोडवाल, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था और प्यार हो गया। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म बाजीगर से। इस गीत को गाया है आशा भोसले और विनोद राठौर ने।

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में अभी आपने सुना यह गीत, फिल्म का नाम था बादल। और आइए अब सुनते हैं शान का गाया हुआ ये गाना, फिल्म है सांवरिया।

अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म सड़क का ये गीत, और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS। कार्यक्रम गीत बात और SMS में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम गीत बात और SMS में जो संदेश हमारे पास सबसे पहले आया है वो आया है नरवेल महाराष्ट्र से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं PS नवानकर, निर्मला, विशाल, नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष और इनके सभी संगीत साथी। और अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है झारखंड खरसावा से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव और इनके सभी परिवारी जनों ने। और ये संदेश हमारे पास आया है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं श्री रामपुर से मनोज जेठावा और हर्षा जेठावा। ये संदेश हमें लिख भेजा है मधुबनी बिहार से मोहम्मद सबीर परवाना, मोहम्मद साजिद अली, मोहम्मद शाहिद अली और मोहम्मद जाहिद अली ने। ये फरमाइश आई है नागपुर महाराष्ट्र से विठल यादव, अनसुईया, पवन राजे यादव, मंगेश इंगले, संध्या और सुराज विराज की। ये फरमाइश मैं लिख भेजी है गंजुडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान और शमशुल यासीन ने। अगला संदेश हमारे पास आया है नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता और सूरज और PR जैन का। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता

कबीर चहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता साक्षी, अंजलि करवा, बाला साहब, जयश्री महत्रे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीवी कुल थे। अगली फरमाइश बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजद रानी, हिना कौसर और इनके सभी संगीत साथियों की। ये संदेश अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप प्रामिकर, हर्षा, अक्षय, रुद्रा और इनके सभी परिवारीजनों का। अगला संदेश आया है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, जानक चंद मल्होत्रा, पीयूष सिक्का, कोयल डुग्गू, भाविका सिक्का का। ये संदेश हमें लिख भेजा है बक्सर हर बिहार से राजा एस डी अंसारी, नस्मिल इस्लाम गुनोरी, दानिश गुनोरी और इनके सभी संगीत साथियों ने। अगला संदेश चितलवाड़ी अकोला से अमोल इंगले, अर्चना सर्वेश और अधिरा इंगले का। ये फरमाइश आई है कोयते वस्ती पुनावले से अशय सोनवने, करिश्मा अविका, साइशा और अजय का। ये संदेश लिख भेजा है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने। ये फरमाइश छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा की। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार। ये संदेश उत्तर प्रदेश दूल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून का। ये संदेश आया है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, सीता और गीता का। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता शांति निकेत राजनगर से क्रांति गुप्ता, गोदावरी देवी और रेणु मिश्रा। अगली फरमाइश बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आगे आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजनी, रोशनी, ख्याति और इनके सभी परिवारीजनों की। ये फरमाइश आई है कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और रितेश की। अगला संदेश हमें लिख भेजा है मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरभ, सायना और निवान शर्मा ने। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं निम्होरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख, शरद और सुनील कोंडे। अगली फरमाइश आई है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा की। ये संदेश हमें लिख भेजा है हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, मोहाली से टी डी मल्होत्रा, कालका से शुभचंद्र बजाज ने। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता है छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू, तरुण, श्रीनिका और श्रीनिजा। अगली फरमाइश लिखने वाले हमारे श्रोता है एकता कॉलोनी रोहतक से सीतामराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल, तन्वी और अंकित कांगड़ा। ये संदेश हमारे पास आया है वड़िंगखेड़ा पंजाब से लिखने वाले हमारे श्रोता है मिंटू टोमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा। अगला संदेश पद्मा टॉकीज नेपाल नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह का। ये फरमाइश आई है कस्बा विलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम, जैनब की। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गाना। फिल्म का नाम है सन ऑफ इंडिया।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस के लिए अगला संदेश हमें लिख भेजा है बेरड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता हार्दिक, प्राची और तनिया करमकर ने। और ये संदेश राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार का। अगली फरमाइश आई है महबूबपुरा सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद जावेद खत्री, मोहम्मद इकबाल खत्री, जैद मुनीरा और बाबूबाई खत्री की। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह रोहतास बिहार से सोनम और अनामिका सिंह। ये फरमाइश आई है जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक शर्मा की। ये संदेश हमें लिख भेजा है साउथ दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता ने। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण, तरुण और प्रतीक चौहान। और ये फरमाइश तेलंगाना चट्टुपल से कस्तूरी रामुड़े, वोमा देवी और पृथ्वी नारायण की। ये संदेश सहारनपुर से सोनाली नारंग और इनके सभी परिवारीजनों का। ये संदेश आया है समस्तीपुर बिहार से एक मीना कारी, पूंजराज, आरती, आकर्षण, जयश्री, कारी राय कारी का। और ये फरमाइश हमें लिख भेजी है तेलीपारा विलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंशी वास, श्रीमती करुणा, आयुष, विवेक और आयुषी श्रीवास ने।

ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी और बलवीर सिंह। अगली फरमाइश आई है वर्टिंग रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित, लकी, तानिया और इनके सभी संगीत साथियों की। ये फरमाइश पदमपुर श्रीगंगानगर से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति, भूमिका और इनके सभी संगीत साथियों की। अगला संदेश खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और नानकचंद मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल और डुग्गू भाविका सिक्का का। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं गुंजाला बीड़ से नारायण देव घुगे, सुनंदा घुगे, महेश निर्मला और भगवान घुगे का। ये संदेश धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और अयान बाबू का। अगला संदेश हमें लिख भेजा है छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामचरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति ने। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म उड़न खटोला का यह गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने।

का संदेश मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से लिखने वाले श्रोता हैं अभिजीत गवाड़कर, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत, प्रिंस, एकांश और टुक टुक गवाड़कर। और ये फरमाइश आई है पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक ऑरेंज के सभी परिवारीजनों की। और ये संदेश हमें लिख भेजा है छोटी बलिया मुंबई करजत से अहमद भाई, फूल वाले दुखना सदक जूही, इमरान अहमद, कापसहेड़ा से आमना नसरीन, बागवान आसमा परी, राबिया, आशु अहमद, शमीम अहमद, अखलाक अहमद और इनके सभी संगी साथियों की। वोरखेड़ा पीतरामल से विनोद मूर्त, नेहा जैन, मयंक, चेतन नाहटा और इनके सभी परिवारीजन। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, नरेंद्र कुमार, उमा यामिनी, सीतामढ़ी से राकेश पांडे और अरुण पांडे। ये संदेश दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार, रिम्मी, तनुश्री, अभय कुमार, सनातनी, शिवानी, प्रियंका, रिया, जिया, टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध, मुन्नी देवी और इनके सभी परिवारीजनों का। अगला संदेश आया है डापकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूर का, सदानंद और कुमार गौरव मंदूरकर का। ये फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ से जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या और इनके सभी परिवारीजनों की। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या और इनके सभी परिवारीजन, जिला सिरसा, हरियाणा से। अगला संदेश हमारे पास आया है जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसौलिया का। अगली फरमाइश भागलपुर से जीपी वर्मा, लेन मुंदी, बिहार से सुभाष हरी, मणिकांत हरी, इंदु कुमारी, अंक, अंकेश, अंकुर और इनके सभी परिवारीजन। ये संदेश कोल्हापुर से विजय चौहान, तेजस्विनी, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता, अनिकेत और इनके सभी संगी साथियों का। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं जिला वारंगल से मोहम्मद खजा, फजीउद्दीन, आयशा, तबस्सुम, जुबेरिया, रिजवानुद्दीन और इनके सभी परिवारीजन। अगला संदेश शार्दुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का। ये फरमाइश आई है खंडवा से उमाराज, कुलदीपक, जगदीश, प्रभारानी और इनके सभी संगी साथियों की। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से लिखने वाले श्रोता दुखी राम यादव, स्नेहलता, पिंकी यादव। और ये फरमाइश बिहार स्टेट डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया, गौरैया जालंधर से अशोक जाटव। ये संदेश हमें लिख भेजा है संदीप मक्कर, ज्योति, मन्नत, भरत, कमल साहनी, चौक गोरिया, जालंधर से। और ये फरमाइश आई है गणेशपुर गुजनुडवारा से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज, गुलफराज और मुस्कान की। अगला संदेश लिखने वाले रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और इनके सभी संगी साथी। अगला संदेश डोंडी होलोहारा से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी, चंचल, कामेश और माहिरा नेताम का। ये संदेश आया है कुरुक्षेत्र से दीपक सैनी, प्रमिला, अनुश्री, मीरा, सिमरन, योगेश और इनके सभी संगी साथियों का। अगली फरमाइश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं पंढरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रौनक और इनके सभी संगी साथी। आइए सुनते हैं आप सबके फरमाइश पर आशा भोसले का गाया हुआ ये गाना, फिल्म का नाम है आए दिन बहार के।

कार्यक्रम गीत बात और SMS के लिए ये संदेश आया है हमारे पास छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं प्रमिला मरावी, नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी। ये संदेश शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर, दिलीप वर्मा, राजू, रंजन, रजक, संजीव वर्मा, विपिन, अरुण, संजय, सोनी, पवन, सुनील, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके सभी परिवारजनों का। और ये संदेश आया है कोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और साई गायकवाड़ का। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता कोलगांव से पांडु चंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग कुमार। ये फरमाइश आई है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना से गुरुवंश सिंह जौड़ा और इनके सभी परिवारजनों की। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता है छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीउद्दीन सिद्दीकी, जीशान शहनवाज और इनके सभी परिवारजन। ये संदेश लिखा है हमें नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई, शेख चांद फारूक और इनके सभी संगीत साथियों ने। ये संदेश हमें लिख भेजा है छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली प्राजक्ता, वैष्णवी गायत्री और यज्ञेश घोड़के ने। अगला संदेश हमारे पास आया है मुक्कम पोस्ट पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज और इनके सभी संगीत साथियों का। ये फरमाइश आई है जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश।

काश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह, राहुल की। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हुआ यह गीत। फिल्म का नाम है द बर्निंग ट्रेन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: प्रस्तुत है ब्रज लोकगीत के कार्यक्रम में रांझा गायन। आज के कलाकार हैं भगवान दास अज्ञानी।
2: बहन और रांझे को देख करके पैरन तले जमीन खिसक गई। अपनों मुंह लटका करके और बहू के सामने

0: हाँ बेटा पटमल, का बात है तेने इतनी रात को मोह जगा दियो भैया? का बात है, कछु बात भाई? तो पटमल क्या कह रहो मैया से?
1: क्या कह रहो भैया?

मेरे प्रिय श्रोताओं, हीर जब बैठ कर के खेल लई, खिरक के दरवाजे की तरफ हीर की पीठ ही और रांझे के सामने, तो जब गोटी फेंक रही तो मैया भैया भौजाई खड़े देखे, तो हीर बोली, रांझे गोटी फेंक, हार जीत तो मालिक के हाथ है। तो रांझो बोलो कि कौन सी गोटी फेंकू ने जे तो बता दे मोए। तीन तीन गोटी मेरे सामने खड़ी भैया ने, पीछे मुड़ के देख ले। हीर ने पीछे मुड़ के देखो तो मैया भैया भौजाई और मुंह लटका करके खड़े भैया। हीर उठ करके और मैया के पास जावे है और मैया से क्या किए।

किया, इसको तो अल्लाह ने भी किया था, खुदा ने भी किया था। और हमारे कृष्ण भगवान के 16,008 रानी थी, मेरी क्या बात करती है।

खुदा ने भी किया था, और मेरे बाप ने धीमरनी की खातिर और मेरे बगीचा में कुआ बाबरी खुदवाए, और मेरो चाचा सेत हो ना बाने जे रोस, यानी जे बाउंड्री जो है कहा है मालिनन से आसनाई करवे के ताई ऊंची ऊंची बाउंड्री करवाई मेरे बगीचा की। मैया बोली, भैया जे तो बवाल है। तो मैया से हीर का कह रही है, भैया

0: भैया कल्लू नाई हमारे बाप की हजामत बनाने के लिए आता था, तो तेने उसको पेटी बनवा करके दीनी, चांदी की, सोने चांदी की कटोरी उस तरह बनवा के दिए। क्यों दिए थे? कि बाप के बहाने वो तुझसे मिलने आता था। इधर पट्टमल भैया जब खड़ो भयो है, तो भैया से का कह रही है?
1: का कह रही है?

0: तीनन की जब पोल खुली तो हैरत में पड़ गई, बोले ये तो पैदा होते ही और गड्ढा खोद के जमीन में गड़बा दी नहीं, जाने तो बाप की भी ले, चाचा की भी ले, मैया की भी ले, और भैया की और भौजाई की भी पोल खोल के रख दी। शर्मिंदा है करके और तीनों जने महल के लिए चल दिए। महल में आकर के अब एक दूसरे से नजर ना मिला पा रहे, बीच में जो है शर्मिंदा है गए, तो महल में आकर के एक योजना बनाई कि कैसे भी राझो मरनो चाहिए। पटमल बोलो भैया, ओ मैया मेरे पास जाको इलाज है, रांझे तो मैं मरवा दू। तो बोले बेटा जे बता दे वो कैसे मरेगो। बोले मैया हमारे सियाले में एक कारे डहर के नाम से जंगल है और बा जंगल में भूरा सिंह और सिंह नहीं रहते हैं, बा जंगल में आज तक कोई ग्वारिया गैया चराबे के ताई ना गयो भूरा सिंह के भय की वजह से। मैया बोली बेटा बात तो तेने बहुत बढ़िया कही है, और देख मैया सुन हमारी 100-200 गैया ने ले जागो, 10-20 गैया शेर शेर नहीं खाए जाएंगे, मगर रांझे है ना छोड़ेंगे, क्योंकि वो मनुष्य है और मनुष्य को मांस शेर को बड़ा बढ़िया लगता होगा भैया। तो बोले ठीक है, मगर बात एक है। तीनों जने बोले के जा हीरते केगो को, तो भौजाई बोली मैं कहूंगी इधर खिरक में रांझो और हीर से का कह रो
1: भैया।

अगर हीर मेरी घोड़ी आज यहाँ होती तो तुझको घोड़ी पे बिठा करके और उड़ा कर ले जाता, मगर बात तो एक आ रही है कि तेरे कुल कु दाद लग जा तो जालिए मैं ऐसो गलत काम ना कर वो चारों। और एक काम कर, पीरी फटबे बारी है, लोग बाग गांव के डोल डाल कुछ

के डोल डाल कु जांगे लोटा लेके और तू अपने महल कु जा यहां से। हीर चली और जैसे ही बीच पौरी में पहुंची सोई भौजाई ने आए के झट पहुंचे पे थे हाथ पकड़ लियो। बोले जा कहां रही है, पहले मेरी बात है तो सुन ले। बोले का कह रही है बोल।

क्रोध में आकर के उल्टी लौट करके जाती है, रोती भाई तो रांझो तो खिरक में होइयो। बानी जी तो यार अभी गई और अभी लौट के आई। तो बोले हीर कैसे तेरी आंखन में आंसू हैं? तो क्या कह रही है हीर,

0: बावरी है रही है, खामा खा रो रही है। अरे मैंने जबते हो समारोह करोई का भैया गैया चराई है, तो जामे कौन सी बड़ी बात है, कार्य में भेज रही है, कार्य में चरा लांगो और पीरे में भेजेगी तो पीरे में चरा लांगो। इधर राजे ने गैया दगरे में छोड़ दी है, और जब झूमर गैया आई है तो हीर ने हाथ को झालो दे के बुलायो और झूमर के ऊपर हाथ फेर करके बोली हीर के, देख झूमर अगर या मेरे रांझे को और काले ढेर से अगर मुझे सही सलामत मिलाएगी तो तेरे सींग सोने से और जवाहरात हीरा लगवा करके मड़वा दूंगी। झूमर गैया बोली बहन चिंता मत करे, जब तक इन नथुअन में सांस रहेगी जब तक तो तेरे रांझे को बाल बांको ना होन देंगे। आज तो आदमी भी धोखेबाज है, जामे तो वो गैया बेचारी जान मरी।
1: वाह
0: कोई बात नहीं, चल दिए और जा करके

0: मेरे प्रिय श्रोताओ, रांझे ने कारे ढेर में गैया हाँक दई, गैया ढेर में हाँक दी नहीं और एक कदम के पेड़ के नीचे तंबल बिछा करके रांझो बैठ जावे। और जब रांझे ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो क्या देखता है ढेर में,
1: क्या देखे भैया,

0: सांझे ने अपनी द्वागल बंसी बजा करके तो सारे पक्षी जो इधर बिधर उड़ रहे वो कदम के पेड़ पर बंसुरी की धुन से आ गए, आए करके बैठ गए और रांझो कदम के नीचे सो गयो क्योंकि थक गयो बहुत दूर से चलो। इधर गैया चरती चरती और वह शेर की भाट पे पहुंच गई। इधर क्या था, शेर की गुफा से भाट कही है यहां पर, तो शेर नी अपनी जांग पे और शेर को सिर रख करके और पंखाते हवा कर रही। जब शेरनी की नाक में खुशबू पहुंची तो एक मट्टी को डेला शेर की नार के नीचे लगा दियो और आए करके गुफाते बाहर देखी तो भैया वाकू गई नजर आवे लगी। तो माने मालिक को आदाब कियो के बारे मालिक मेरो आदमी अब दो चार छह दिन आ तो कहूं शिकार खेलवे जाएगो ना मेरे घर में कारे ढेर में ही रहेगो हम खूब ऐस मौज करेंगे। मगर गैया तो है जिका जाएंगी हमते बच के, मगर वह ग्वारिया को भी देखनो चाहिए कि ऐसा कौन सा दिलावर ग्वारिया है जो उसने काले ढेर का और मेरे पति का खोप नहीं खाया और गैया चरावे कारे ढेर में आयो। बड़ी बड़ी घास ही शेरनी कूदती फांती और रांझे के पास जाकर के पहुंच जाती। तो रांझे के पास पहुंच करके और शेरनी रांझे को कैसे जगा रही है,
1: कैसे जगा रही है,

0: शेरनी बोली, ले क्या बाबरो भयो जी ग्वारिया, गैयन ने चरावे आए। अरे हम तो बेगम है, इस काले ढेर की रानी है, और हमसे ही पूछ रहा कि तुकू कौन है सतायो। तो शेरनी रांझे से का कह रही है?
1: क्या कह रही है भैया?

अभी आप सुन रहे थे रांझा गायन, कलाकार थे भगवान दास अज्ञानी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत बनाने में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है।
1: आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना है जो विकसित भारत के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों

0: पक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा की गहराई में निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ आई थी, जिससे जान माल का काफी नुकसान हुआ। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को परिषद में कहा कि समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैरकानूनी प्रतिबंधों का मनमाने दखल का असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। इन दोनों ही कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा घर अंगना। इसमें बहनें आज सुनेंगी वार्ता ब्रज में राधाष्टमी महोत्सव। वार्ताकार होंगी सुषमा सारस्वत और साथ ही बहनें लोकगीत का भी आनंद ले सकेंगी।

संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा। प्रसंग होगा राधा रानी से श्री कृष्ण का मिलन। कथाकार होंगे योगेश तिवारी।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप कार्यक्रम सुनेंगे सेवा ही संकल्प, रात्रि 8 बजे। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के मथुरा केंद्र से प्रसारित करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशगान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर अंगना।

घर अंगना कार्यक्रम को सुनने वाली हमारी सभी बहनान को विजयलक्ष्मी बहन की राम राम। संग गई हमारी लाडली राधा रानी के जन्मदिन की खूब खूब बधाई। आज हमारे ब्रज में इतनी चौल है, इतनी धूम है, घर घर में आनंद बरस रहे है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लाली को जन्म भयो है। हमारे ब्रज में आज कण कण पत्ता पत्ता प्रसन्न है। इतनी प्रसन्नता छाई भई है, घर घर में पुआ पोड़ी हलुआ बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लाडली राधा रानी आई है। करुणामयी सरकार तुम प्रगटी भानु के नेहे, कृपा करियो श्री राधिके दीजो अपनो नेहे। राधा राधा नाम सो रीजत हैं घनश्याम, जागर राधा पग धरें और वोई घर बन जाए सुख धाम। तो हमारे ब्रज में जा समय घर घर में राधा रानी जन्मी है। हमारी सखी बहन गीत गा रही हैं, आज दिन सोने को भयो महाराज, सोने को सब दिन रूपे की रात। आज हमारी बहनन ने अपना दिन सोने सो लग रहे है। इतनी प्यारी लाली के जन्मदिन पे पूरा ब्रज सजो भयो है बहनों।

0: बाहर से यात्री यहाँ दर्शन कर कर के अपने आप को धन्य बनाए रहे हैं। बहनों, जब ब्रज में गायक नाच सब चल रहे हो तो हम काहे पीछे हटें, हम आनंद लें, फिर बाद में अपनी बातन को करेंगे। पहले मन मान रहे हो ना है, तो पहले गीत संगीत को आनंद लें, थोड़ा झूम उठें। क्यों? क्योंकि बात ही इतनी प्रसन्नता की है। तो बहनाओ आओ।
1: भारतवर्ष में

0: बहना सुन रही हती जब बहुत प्यारे से लोकगीत को, जब बहुत प्यारे से बधाई को। मंगल है गयो है हमारे ब्रज में जा समय, क्यों? क्योंकि हमारी राधा रानी आई वही है। धन्य धन्य है मधपुरी, धन्य धन्य ब्रज धाम, यहाँ जन्मी श्री राधिका, जन्मे हैं घनश्याम। हमारे राधा रानी ने यहाँ जन्म लेके हमको धन्य कर दियो। जब इन नैनन में राधा रानी की छवि आवे है ना, तो हमारे मस्तक झुक जामे और राधा रानी से प्रार्थना करें कि हे राधा रानी, हमें जन्म जन्म ब्रज को पास दियो। तो बहनों, जब पर्व को कैसे मनाए रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, जहाँ में कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है और कहाँ भयो होगा बास में, तो आओ हम जाने सुषमा सारस्वत बहन से।
1: भारतवर्ष में प्रति माह, प्रति पक्ष और प्रति सप्ताह कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्रत, त्योहार या पर्व का आयोजन अवश्य किया जाता है। और जब हम ब्रज की बात करें तो यहाँ नित्य आनंद, उत्सव, उमंग और भक्ति की रसधारा बहती रहती है। हमारे ब्रज धाम को चारों धामों से निराला बताया गया है। यहाँ पर प्रत्येक माह में त्योहार और पर्व की धूम मची ही रहती है। ऐसे ही भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जो आनंद उत्सव मनाया जाता है, उसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस माह यह उत्सव 19 सितंबर को मनाया जा रहा है। वर्षभानु दुलारी श्री जी महारानी किशोरी जी का प्राकट्य भादौ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था, इसलिए इस दिन को राधा अष्टमी के नाम से जानते हैं। राधा रानी के जन्म के संबंध में पुराणों में जो कथा वर्णित है, उसके अनुसार राधा लली का जन्म कीर्ति मैया के गर्भ से नहीं हुआ था, अपितु उनका प्राकट्य हुआ था। और श्रीजू के प्राकट्य के बारे में भी कुछ कथाएं प्रचलित है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है कि जब भगवान श्याम सुंदर ने मोहिनी रूप धारण किया था, तो सभी देवता उनके सुंदर रूप पर मोहित हो गए थे और उनके पीछे पीछे चलने लगे। जो सारी मोहिनी रूप धारण करने वाले कृष्ण थे, उनको देवता यह चाह रहे थे कि ये मेरी पत्नी के रूप में मेरी स्त्री बने, मैं इनको भार्या के रूप में वरण करूं, इतना सुंदर मनमोहक स्त्री हमारी भार्या बन जाए। परंतु सूर्य देव ने जब मोहिनी रूप को देखा तो उनके हृदय से वात्सल्य पैदा हुआ और सूर्यदेव ने ऐसी प्रार्थना की कि इतनी सुंदर मोहक रूप धारण करने वाली मेरी पुत्री बने। सूर्यदेव ने बेटी के रूप में प्राप्त करने की कामना की। श्याम सुंदर उनके इस भाव पर रीझ गए और उन्होंने सूर्यदेव से कहा कि मैं द्वापर में पृथ्वी पर अवतार लूँगा, तब मैं आपके यहाँ पुत्री रूप में प्रकट हूँगा और द्वापर युग में वृषभानु और कीर्ति जी के यहाँ राधा जी ने जन्म लिया। परंतु शास्त्रों में राधा प्राकट्य की कथा इस प्रकार कही गई है। वृषभानु जी के एक पुत्र थे जिनका नाम श्रीदामा था, परंतु उनके मन में ऐसी इच्छा थी कि उनके एक पुत्री जन्म ले। इस प्रकार अनेकों वर्ष तप करने के पश्चात राधा जन्म का समय आया। वृषभानु जी नित्य यमुना स्नान को जाते थे और यमुना महारानी से नित्य प्रार्थना करते कि मुझे पुत्री रत्न प्राप्त हो जाए। तब एक दिन वृषभानु जी यमुना किनारे खड़े होकर महारानी की वंदना कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा दूर से एक स्वर्ण के समान आभा बिखेरने वाला कमल पुष्प बहकर उनकी ओर आ रहा है। उस कमल पुष्प की आभा बहुत ही तेजोमय और अगणित सूर्यों के समान दैदीप्यमान थी। धीरे धीरे वह कमल पुष्प जब उनकी ओर बहकर आया तो उसको वृषभानु जी ने अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही वृषभानु जी ने कमल पुष्प की ओर देखा तो उसमें एक अप्रतिम सौंदर्य से युक्त कन्या विराजमान थी। वृषभानु जी ने कन्या को हृदय से लगाया और रावल में जहाँ उनका घर था उस कन्या को ले आए। नगर के विद्वान पंडितों को जब यह घटना ज्ञात हुई तो सभी ने वृषभानु जी को बताया यह कन्या श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा है, यह शक्ति ही आपके घर में पुत्री रूप में अवतरित।

पुरस्कृत हुई हैं। कन्या रत्न पाकर कीर्ति मैया और वृषभानु जी दोनों ही प्रसन्न होकर बधाई गाने लगे। शंख नगाड़े की ध्वनि के साथ समस्त ब्रजवासियों ने लाली की बलैया उतारी और झूम झूम कर बधाई गाने लगे। आनंद बरसे रहो।

जननी आज। राधा जन्म के उपलक्ष्य में ब्रजवासियों ने व्रत किया, पूजन किया, आरती करी, आनंद मनाया। राधा अष्टमी के दिन ब्रज में मुख्यतः बरसाने में लाडली जी के भवन में वृषभानु जी की हवेली में बहुत धूमधाम से राधा प्राकट्य का उत्सव मनाया जाता है। सभी ब्रजवासी प्रातःकाल स्नान कर राधा कृपा कटाक्ष, राधा स्त्रोत और राधा कवच का पाठ करते हैं। राधा जी के 28 नामों का मुख्यतः जाप करते हैं। इसके पश्चात धूप दीप नैवेद्य से पूजन कर मिष्ठान फल और भोग प्रसादी का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करते हैं। राधा लली की आरती करते हुए ऐसे गाते हैं, घर घर में बजत बधाई, कीर्ति जी ने लाली जाई, शुभ मंगल घड़ी आई, वृषभानु जी ने मोहर लौटाई, घर

शुभमंगल घड़ी आई, वृषभान जी ने मोहर लौटाई। इस प्रकार से राधा जो श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, कृष्ण ने अपने आह्लाद को जो रूप दिया वही राधा बनके प्रकट हुई और समस्त संसार में शक्ति स्वरूपा लाडली जी को प्रादुर्भाव भाद्रपद की शुक्ल पक्षमी अष्टमी को मनाया गया और प्रत्येक मंदिर में बहुत जोर जोर से जयकारे लगने लगे। राधा रानी की जय, बरसाने बारी की जय, मंदिरों में घरों में सब ओर से वही ध्वन चारों तरफ गूंजने लग गई। सुंदर पुष्प गुच्छ और पुष्पों के हार से सुंदर सजावट कर अनवरत राधा नाम का कीर्तन किया जाता है। लाडली जी के सुंदर झांकी के दर्शन किए जाते हैं और नारियल चुनरी और श्रृंगार की समस्त सामग्री किशोरी जी को अर्पित की जाती है। सभी मंदिरों में घरों में घंटे घड़ियाल की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई फलाहार उपवास करता है, कहीं कोई निराहार उपवास करता है और कुछ भक्त तो निर्जल व्रत भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1000 एकादशी को 100 बार से गुणा करने पर जो संख्या आती है उसके पुण्य फल के स्वरूप में जो फल प्राप्त होता है वही फल राधा अष्टमी के व्रत करने से मिलता है। इसीलिए भक्त बोलते

0: की जय।
1: इस प्रकार ब्रज में राधा अवतरण का महोत्सव बहुत धूमधाम से, उल्लास से और आनंद के साथ मनाया जाता है।

सुषमा सारस्वत बहन से ब्रज में राधाष्टमी पर्व के विषय पे। अभी हमारी बहन सुन रही हती जब बातचीत को, कितनी अच्छी जानकारी कि मन नहीं कर रहे हो कि बहन को विदा दिए, ऐसा लगे सुनते ही जाओ। राधा नाम है ही इतना मीठो, राधा राधा नाम सो रीजत हैं घनश्याम, और बहना कृपा राधा करें और अपनों नेह दें तो बन जाएं सब काम। जब हम पे राधा अपनी कृपा करें ना तो सबरे काम बन जाएं। और हमारी तो जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, वो तो हमारी राधा रानी से जुड़ा ही भयो है। हम अपनी राधा रानी से एक झणु अलग ना है रह सकें, ऐसा लगे किशोरी जी में हमारे, हम में किशोरी जी और किशोरी जी में हम बसे भय हैं। और जय भाव को हम ब्रजवासी अपनी राधा रानी से कहें कि राधा रानी हमें ब्रज में ही रखियो, पल पल प्रार्थना करें। राधा रानी विरक्ति तो हमें ब्रज से कबू ना होए, चाहे हमारे प्राण क्यों ना निकल जाएं। तो इतने भाव से, सखी भाव से सबई राधा रानी को मना में, हमारे ब्रज की मान्यता है सबई ब्रज में सखी हैं। और देखो सखीन की बात करें तो आज स्वामी हरिदास जयंती है, भक्त और भगवान दोनों को ही जन्मदिन है, तो कितनी अच्छी बात है। तो जाए हिल मिल के मना में और ठाकुर जी को नाम लें, वर्णन करें, ठाकुर जी को कीर्तन करें। क्यों? क्योंकि भगवान कलयुग में तो कीर्तन मात्र से ही प्रसन्न है जमें, और अपने घर के काम करते चलें और नाम लेते चलें। तो बहनाओं आओ सुने जब बहुत सुंदर से लोकगीत को।

जो रस बरस रहे हो बरसाने, वो रस वैकुंठों में ना आए। माधुरी शर्मा बहन से अब आई आनंद ले रहे हते, जब बहुत प्यारे से लोकगीत को। बहनों, इन गीतन में हमारी मिठास छुपी भई है, हमारी ब्रज की छवि छुपी भई है। जब गौ घर में बधाई गवे ना, तो दूर दूर तक आनंद लिए जे हमारे ब्रजवासिन को स्वभाव है। गली में से निकलते फिरते हो मटकते भय निकले लोग, और बधाई है ऐसे कहते भाई जामे। और जामे तो आज हमारी लाडली जी को जन्म देना है, तो ऐसे ही थोड़ी ना बधाई होगी, क्योंकि हमारी राधा रानी तो सवन को सार हैं। तो आओ सुने एक और बहुत प्यारा सो जे लोकगीत।

जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। अरे हम ब्रजवासी तो अपने दिन की शुरुआत राधा नाम से ही करें, और कल्पना एस बर्मन बहन ने तो राधा नाम को ऐसा संचार करो कि मन में आनंद समाय गयो। और बहनों जा आनंद में ऐसे गोता खाए कि समय को पतो ही ना है कि कहाँ काम करना है, निरे काम पड़े हैं। चाहे घर में अपने त्योहार को भोजन बनाना होए, चाहे अपने बालकन ने विद्यालय से ले भी जाना होए, भक्ति में खोए गए। पर देखो भक्ति में बहुत शक्ति है, तो अपने आराध्या को मनाएं, राधा राधा गाएं, और अब आज्ञा दो हमें हमारे जा घर अंगना कार्यक्रम को यहीं विराम देवे की। हमारी सभी बहनान को विजयलक्ष्मी बहन की राम राम।

0: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर अंगना। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं सामुदायिक शिक्षा गान पाठ के अंतर्गत हिंदी भाषा पाठ। बोल हैं ये वक्त की आवाज है मिलके चलो। गीतकार हैं प्रेम धवन, संगीत श्रीकांत घोष का है।
1: आओ बच्चों, आज तुम सबको हम एक हिंदी गीत सिखाएंगे। इस गीत के कवि हैं श्री प्रेम धवन और इस गीत की धुन श्री कानू घोष ने बनाई है। पहले इस गीत के शब्द लिख लीजिए। चलिए अब लिखना शुरू करें।

ये वक्त की आवाज है, ये वक्त की आवाज है, मिल के चलो। फिर से सुनिए, ये वक्त की आवाज है, मिल के चलो।

0: मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो, चलो भाई। पहला अंतरा, आज दिल की रंजिशें मिटा के आओ। फिर से सुनिए, आज दिल की रंजिशें मिटा के आओ। आगे लिख लीजिए, आज भेदभाव सब भुला के आओ। आजादी से है प्यार जिन्हें, देश से है प्रेम, देश से है प्रेम, कदम कदम से और दिल से दिल मिला के आओ। फिर से सुनिए, कदम कदम से और दिल से दिल मिला के आओ। अब दूसरा अंतरा, जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, जैसे शोले मिल के बढ़े आग के। फिर से सुनिए, जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, जैसे शोले मिल के बढ़े आग के। ये जिंदगी का राज है मिल के चलो, ये जिंदगी का राज है मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो, चलो भाई। आज दिल की रंजिशें मिटा के आओ, आज दिल की रंजिशें मिटा के आओ, आज भेद भाव सब भुला के आओ। आजादी से है प्यार जिन्हें, देश से है प्रेम, आजादी से है प्यार जिन्हें, देश से है प्रेम, कदम कदम से और दिल से दिल मिला के आओ। दूसरा अंतरा, जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, जैसे शोले मिल के बढ़े आग के, जिस तरह चराग से जले चराग, वैसे चलो भेद तेरा मेरा त्याग के। मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो। अब श्री कानू घोष इस गीत की धुन आपको सुनाएंगे।
1: प्यारे बच्चों, एक गीत मैं और मेरे साथी श्री फारूक पहले गाकर सुनाएंगे, तुम सब उसी धुन में गाओगे। एक गीत आलाप से आरंभ होता है, अब ध्यान लगाकर सुनो।

0: medalist Manu Bhakar and shot putter Tajinder Pal Singh Toor will be India's flag bearers at the opening ceremony. The Asian Games will run from today to 4th of October, with more than 500 Indian athletes set to compete across 37 sports. The Indian contingent will feature five individual Olympic medalists, despite the withdrawal of defending javelin throw champion Neeraj Chopra due to an ankle injury. PV Sindhu will spearhead the badminton campaign, while Mirabai Chanu leads the weightlifting contingent. Shooting will feature Manu Bhakar, Lavlina Borgohain will compete in boxing, and Aman Sehrawat will represent India in wrestling. The India Meteorological Department, or IMD, has predicted heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Madhya Maharashtra, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana tomorrow. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Marathwada, sub-Himalayan West Bengal, East Rajasthan, Jharkhand, Goa, Odisha and parts of northeastern India tomorrow. Heavy to very heavy rainfall is also likely to prevail over Andaman and Nicobar Islands today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says free trade agreements are opening new doors of opportunities for the country's youth. Distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Prime Minister Modi says India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average. Highlights: India is the only country in G20 that fulfilled commitments made at COP21 ahead of schedule. Government to train 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories. India dispatches 11 tons of fresh relief material to flash flood recovering Nepal. UN warns Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees, also raises concerns over the directive requiring medical institutions to remove Afghan students. Assam remembers iconic singer-composer Zubin Garg on his death anniversary, and 28th Asian Games to begin in Japan this afternoon. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी। और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ

0: वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में 2 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
2: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उगने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदाय

0: की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
4: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन, आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: भारतीय अंतरिक्ष

0: अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
1: इंडिया स्पेस प्रोग्राम
2: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
1: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालुमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आइची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म मौसम का ये गीत, जिसे लिखा था गुलजार ने, संगीत दिया था मदन मोहन ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म कसम तेरी कसम से। इस गीत को लिखा है कातिल शिफानी ने और संगीत नरेश शर्मा का है। इस गीत को गाया है अनुराधा पोडवाल और पंकज उदास ने।

अनवर और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये गाना। फिल्म का नाम था आहिस्ता आहिस्ता। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। फिल्म है जब जब फूल खिले। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

अनजान के लिखे इस गीत को संगीत दिया था राजेश रोशन ने, स्वर विनोद राठौर और कविता कृष्णमूर्ति के थे। फिल्म का नाम था याराना। और इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।